0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot. Mirchi. Fresh Maal.
1: जब हर बीट में हो तड़का तब बनती है चटनी।

गाने को आवाज दी है नीलकमल सिंह और ममता शर्मा ने, म्यूजिक दिया है आदित्य देव और नीलकमल सिंह ने, और लिरिक्स लिखे हैं धीरज बबुआन ने। धमाल फोर से सुनते रहिए चटनी, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6, it's hot.

का मस्तानी चा बुरा कर दे हाल, पलक फड़के आए के दिल धड़के, उमर की उठा कड़कती कमा, कातिल अदा जालिम हया।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 7। सुनते रहिए 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirci, burga.
1: Hello.
2: Hello, Tejinder ji.
1: हाँ जी,
2: हाँ जी तेजिंदर जी, मैं बोल रहा हूँ पासपोर्ट ऑफिस से। आपने अप्लाई कर रखा था पासपोर्ट?
1: जी, हाँ जी किया था।
2: हाँ, ये तेजिंदर जी आपका थोड़ा लेट मिलेगा पासपोर्ट, आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था मैंने।
1: कितना लेट मिलेगा
2: आपको इसमें? एक सेकंड रुकिए, मैं चेक कर लेता हूँ। अरे इनका तेजिंदर का पासपोर्ट कब मिल रहा है? तत्काल में, आपने तत्काल में बनवाया ना इमरजेंसी में?
1: हाँ जी,
2: एक सेकंड। हाँ, इमरजेंसी का है सर। 3.5 महीने बाद मिलेगा आपको पासपोर्ट।
1: 3.5 महीने बाद?
2: हाँ जी
1: भाई साहब, तत्काल का क्या मतलब होता है? 5 दिन में मिलता है तत्काल का? तो
2: सर वो मुझे ही मालूम है, मेरे को क्यों समझा रहे हैं। असल में तेजिंदर जी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। आपके आसपास कोई है तो नहीं?
1: नहीं, कोई नहीं है।
2: मैं ये कह रहा था, हमारा एक बंदा है जिसकी शक्ल आपसे मिलती है, ठीक है?
1: अच्छा।
2: बिल्कुल वो डिक्टो कॉपी लगता है आपका, जीरोक्स लगता है। अच्छा, उसको निकलना है दुबई। वो वैसे तो निकल नहीं सकता अपने पासपोर्ट से क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी। तो हम कुछ दिन के लिए आपके पासपोर्ट पे से आपका फोटो हटा के, ना आपकी दाढ़ी होती तो चल जाता, उसका फोटो चिपका के आपके नाम से वो दुबई जाएगा। वो 3-4 आदमियों को ठिकाने लगा के वापस आ जाएगा, तो उसमें 3-4 महीने लगेंगे।
1: क्या बोल रहा है भाई? कौन? हेलो।
2: तो मैं उसको बोल देता हूँ, वो वहाँ पे वो आपके घर पहुँचवा देगा। आप बल्कि वो बंदा ही।
1: हेलो।
2: हाँ, बोलिए बोलिए।
1: क्या बोल रहा भाई?
2: आपके पासपोर्ट पे उसका फोटो लगा के आपके नाम से वो दुबई जाएगा, 2-3 को ठिकाने लगाना, वापस आ जाएगा, उसका जरूरी काम है।
1: मैं बोल रहा हूँ,
2: मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ।
1: क्या बोल रहा है? क्या
2: आप इतना भड़क क्यों रहे हो? काम आप थोड़ी करने जा रहे हो, काम तो वो लगाने जा रहे हैं ठिकाने।
1: नहीं, नहीं, बात क्या कर रहा है? पासपोर्ट पे किसी और को भेज रहा है
2: यार। आप मेरी तेजिंदर जी,
1: नहीं
2: सोचो वो कितना भड़क रहा होगा। 3 आदमियों को उसको टपका के आना है दुबई में, उसकी भी तो भड़कन सोचो ना। अरे तो यार आपका पासपोर्ट आपको वापस मिल जाएगा, 1.5 महीने के लिए आपका नाम यूज कर रहा है। आपका नाम यूज करने में क्या आपकी गाड़ी मांग रहा है? क्या गाड़ी यूज कर रहा है वो?
1: नाम बता पहले तू, कौन रहा है?
2: ये लकी डॉ निकल रहे हैं, वरना किसी और तेजिंदर को भेज देते। आपका मौका लगा, आप इसे भड़क रहे हो उल्टा। मेरी बात सुनिए तेजिंदर। तेजिंदर, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ और तुम रेडियो मिर्ची पे हो। मुझे शालिनी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुमने पासपोर्ट अप्लाई कर रखा है, तुम्हारा मुर्गा बनाया भाई। तुम बहुत गुस्से वाले हो, तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें दुबई भेज दूँ, उसे नहीं भेजू।
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: तो सिर्फ छोरे करें।
5: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
6: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
7: कम है के?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद, इरशाद

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

0: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं,
1: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
0: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं,
2: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
0: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो। भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों?
3: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं,
1: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
0: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं,
2: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
0: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: गोविंदा, आपका अल्टीमेट फिटनेस टिप कौन सा है?
3: मुझे ऐसा लगता है योग और प्राणायाम जो है, इससे आपकी बॉडी जो है बहुत ही करेक्ट रहती है और आपको मतलब वो घबराहट नहीं होती है।
2: तो ये एडवाइस आप देंगे कंटेम्प्रेरी हीरोज को?
3: योग प्राणायाम तो करते ही होंगे वो लोग, मुझे ऐसा लगता है।
2: आपको क्या लगता है कौन कौन करता होगा? मैं आपको तीन नाम देती हूँ, इन तीनों में से बताइए, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम।
3: ये तीनों एक्टर्स ऐसे हैं, इन लोगों की मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी ज्यादा अच्छी है और पता नहीं कितने पैक निकले हुए हैं। उस जमाने में तो पूरी शाम में सब लोग हीरो लोग पैक ही लगाया करते थे, अब वो पैक उनके पेट पे आ गए। टेढ़ा मेढ़ा क्या नजर आ रहा है? ये पेट है इनका? ओहो, अच्छा अच्छा, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड वेरी गुड।
2: फिटनेस का पता नहीं लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर पर 110 फॉर चीची। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ ना तो नींद आ जाती है।
2: क्यों नहीं हो रही पढ़ाई?
0: क्या करूँ?
1: अरे घोचू, तो लेटे लेटे पढ़ना, अच्छे से सो भी पाएगा रे तू।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?
4: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 8। सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन।

0: हाय, ये कॉल बैंक से है। आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है। हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा। पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं।
1: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज।
2: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
1: एटीएम वाला पासवर्ड है सर, ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
2: हूँ। एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं।
1: हाँ जी,
2: हाँ बोलिए।
1: 33501।
2: अच्छा
1: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए, जरा इनको, ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला।
2: हेलो,
1: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा। मैं फोन मिलाता हूँ। हेलो डार्लिंग, हाय।
3: हाय।
1: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
3: विक्की का पासवर्ड 33501। एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए, क्योंकि उसके पास भी है।
1: धोबी से
3: पूछ लीजिए।
1: अच्छा, ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड।
2: हेलो
1: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर।
4: ये बेल जा रही है।
1: हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप हमारे कपड़े धोते हो?
2: अरे भाई, तो एक बात सुन, ये
1: आपके पास पासवर्ड होगा 33501? हाँ सर, 33501।
2: हेलो,
1: हाँ जी सर, सर यही पासवर्ड है। मेरी बात सुनिए ना,
2: किस चीज से पूछे जा रहे हैं?
1: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर, आपको
2: क्या कंफर्म? भाई मेरा एटीएम कार्ड है
1: ये। एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
2: मुझे बताना है सबको, थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना
1: है। आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था, बेकार में एप्लीकेशन डाल दी, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते।
5: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है। 33501।
2: किसने दिया मेरा नंबर?
5: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था।
2: अरे मैं खुकड़ू को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
7: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
6: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

10 out of 10 क्यों नहीं चाहिए चल ओके देन भरे कलब में रह जाएगी बिल्लो फिर कल्ली तू कौन संभालेगा

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: अर्ज किया है
6: इरशाद, इरशाद

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल, सीधा, नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5, 10, 15, 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी, स्मॉलर फीस, बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: दोस्ती का कुछ सुले मैडम. नो सॉरी, नो थैंक यू.
2: भाई साहब, सॉरी एंड थैंक यू. हमें दोस्ती नहीं, एंटरटेनमेंट चाहिए.
3: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा.
4: खूब मिलेगा, मिलेगा.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
1: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार बार बार कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
2: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, अपना सवाल क्या है वो बता बच्चू।
0: अरे भाई क्या बोलूँ आपको, इधर घर ढूंढना इतना टफ है, इतना टफ है, कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा, क्या करूँ।
1: अबे सबसे पहले तो ये बता कि तू किसका घर ढूंढ रहा है, तभी तो हेल्प कर पाऊंगा ना।
2: मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं।
3: मिर्ची घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 9, सुनते रहिए 89.6 मिर्ची वन।

0: Milci. Iskra bana, uska bana, saka bana. Rabana. Burka, burka. Na virtuala burka.
1: Milci, burka. Hello.
2: Sir, very good evening, man. बैंक से बोल रहा हूँ, मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
1: हाँ जी बोलिए।
2: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
1: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
3: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
1: कौन बोल रही है?
2: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
1: क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
4: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
1: हेलो कौन बोल रहा है?
2: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
1: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
3: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
1: हेलो मैडम।
2: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
1: कौन बोल रहा
2: है? रमेश बोल रहा हूँ सर। से
1: अभी कोई और बोल रही थी?
2: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
1: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
5: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
1: कौन बोल रहा है?
2: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
1: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
6: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
1: कौन बोल रहा है भैया?
2: सर रमेश बोल रहा हूँ, आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? सर
1: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है, नहीं भैया नहीं नहीं चाहिए मुझे।
7: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
2: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
1: कोई बोल रहा है?
2: कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा
8: हूँ। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आप सर फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दे जरा हंस के।
9: थैंक यू
10: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
11: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष, महापुरुष।
10: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
9: 89.6
10: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
6: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन,
11: इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: जॉन अब्राहम आपके हिसाब से द टॉप फिट बॉयज ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री.
2: फर्स्ट रेफरेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी वरुण धवन एंड आई टेल यू व्हाई. क्योंकि वरुण का जो फिजिक है वो बहुत ही प्रोपोर्शनेट है, उसके लेग्स बहुत ही स्ट्रांग है, टाइगर श्रॉफ फैंटास्टिक बॉडी, रणवीर सिंह एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली फिट, एंड ऑफ कोर्स ऋतिक रोशन. ऑनेस्टली अमंगस्ट ऑल दीज इंक्लूडिंग माई सेल्फ आई थिंक सबसे फिटेस्ट इंसान हमारे इंडस्ट्री में इज अक्षय कुमार. एंड आई मीन holistically fit. He can survive anywhere. अगर आप उसको माउंट एवरेस्ट पे छोड़ दो, अगर आप उसको रेगिस्तान में छोड़ दो, अक्षय कुमार will be the only guy who will survive and come out.
1: छोड़ने की जरूरत ही नहीं है जॉन अब्राहम. अक्षय कुमार is the only person in the हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो by choice इन जगहों पर जाएंगे. आप सुन रहे हैं मिर्ची, it's hot.
0: Bollywood बोल्डा, Bollywood, Bollywood, Bollywood बोल्डा. Only on Mirchi, it's hot.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: हाय देयर, व्हाट्स अप, टेल मी।
0: हमारी काम वाली बाई बहुत ही रेगुलर है, हर दूसरे दिन नहीं आती, क्या करूं?
1: वेल इट्स सो सिंपल यार, हर दूसरे दिन नहीं आती ना, तो उसको हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही काम पे रखा कर। या इट्स जस्ट अमेजिंग, फैंटास्टिक, सिंपल।
2: मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं 10। आप सुन रहे हैं मिर्ची वन का तर्क।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidba la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Hello sir, very good evening. सेल्यूलर से बोल रहा हूँ सर, हमारी एक स्कीम आई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको समझाऊँ। ये वॉइस मेल के लिए है, अगर आप चाहते हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती है सपोज माने आप, तो आप कोई भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको आगे भेज सकते हैं।
1: अच्छा,
2: आप हिंदी में अपना मैसेज छोड़ेंगे और हमारी मशीन उसको कन्वर्ट करके दूसरी लैंग्वेज में डब कर देगी सर, जिसका सर कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मंथली कोई चार्ज नहीं लगेगा। सर आप चाहेंगे ये स्कीम आपको दे दी जाए?
1: पास है क्या ये सर्विस?
2: बिल्कुल सर, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है सर, जो आपका नॉर्मल प्लान चल रहा है उस प्लान के अकॉर्डिंग आपका बिल आएगा, सिर्फ आपकी एक फैसिलिटी बढ़ जाएगी।
1: जो क्या कॉस्टिंग पड़ेगा पर मैसेजेस का?
2: सर आप दिन में अगर 100 मैसेज भी भेजते हैं तो आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, आपका नॉर्मल रेंट रहेगा जो आपका चल रहा है अभी।
1: और ठीक है,
2: बीप सुनने के बाद अपना मैसेज छोड़िएगा।
1: ओके अगम सर, मुझे आपके अंडर में काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप प्लीज मुझे अपनी टीम में रख लीजिए।
2: सर वेरी गुड, आपका मैसेज रिकॉर्ड हो गया सर, हमने इसको दूसरी लैंग्वेज में डब कर दिया, अब आपके बॉस ये सुनेंगे, सुनिए।
1: ये क्या है भैया?
2: सर ये आवाज तो आपकी लग रही है, मुझे लग रही है सेंटेंस इधर उधर हो गए।
1: तो भी मशीन चला रहे आती भी है।
2: सर मैनेजर के अलावा किसी और को मैसेज देखे देखिए।
1: हेलो वीना मैम, प्लीज अभी जो आ रहा है प्रोजेक्ट उसके लिए मुझे नॉमिनेट कर लीजिए अपनी टीम में।
2: सर थैंक यू सो मच, आपका रिकॉर्ड हो गया, वीना मैम को ये सुनाई देगा।
1: मजाक कर रहा है तू मेरे से?
2: सर मेरी बात सुनिए, ये जो मेरी बात सुनिए सर, सॉरी आई एम सो सॉरी सर, जितना आप मुझ पे चिल्लाए हैं मैंने रिकॉर्ड कर लिया। देखिए अब सही आएगा, देखिए ये दूसरी लैंग्वेज में आएगा, रुकिए सर आप। हेलो मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए सर, मैं इतनी गाली नहीं सुन सकता सर, मैं इतनी।
3: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने तो रैंडमली आपका नंबर मिला दिया था सर, दिल्ली में सब आपको सुन रहे हैं, आप रेडियो मिर्ची में मुर्गा बन गया है आपका, प्लीज इतनी गाली मत दीजिए यार।
2: सर मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया, देखिए सुनिए क्या आया डब हो गए।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स पटाक।
5: तारीख पर तारीख मिलती रही है लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
6: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

तुमसे मिलके मैंने जाना ये प्यार भी अजीब चीज है। इंसान खुद को भूल जाता है, ऐसा क्यों होता है?

0: रिलैक्स।
1: तुम्हें देखता हूँ तो लगता है कोई ऐसा भी मेरे पास तो है, अरे जिसको मेरी तन्हाई का एहसास तो है।

0: क्या सोचने लगी?
1: सोच रही हूँ, तुम क्या सोच रहे हो?
0: मैं

0: में चीज स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
6: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: खाइए, और खाना है तो थोड़ा सा खाइए। आपको नमकीन पसंद है उसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ही नमकीन खाते रहें। आपको चावल पसंद है तो दबा के आप चावल ही खा रहे हैं आप, यू नो। तो हर चीज़ करनी चाहिए, मगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके यू शुड वर्क इट आउट एंड बैलेंस एवरीथिंग इन लाइफ एंड डू एवरीथिंग इन लाइफ एंड दैट्स आई फील इज द मंत्रा फॉर योर फिटनेस। यू डू एवरीथिंग बट डू इट इन मॉडरेशन एंड डू इट व्हाट मेक्स यू हैप्पी।
1: हेल्थ टिप आपने दिया एकदम क्लास, क्योंकि अनिल कपूर आप आदमी एकदम झकास। आप सुन रहे हैं मिर्ची हिट्स ऑन
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची हिट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bold Eye.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: अनिल कपूर सर, ये सवाल हम आपसे 365वीं बार पूछ रहे हैं कि आपकी फिटनेस का राज क्या है?
3: हेल्थ ऐसी बनाओ, काम ऐसा करो कि आप 40, 50 साल, 60 साल तक आराम से वैसे ही काम करते रहो। मीठा खाना तो थोड़ा थोड़ा, आपको मीठा अगर सूट नहीं करता तो हफ्ते में एक बार

0: बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
1: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
2: कैसे रुक सकता है?
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
3: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए।
1: बूढ़ी बाबा, मेरे पति को मेरे हाथ की रोटी अच्छी नहीं लगती, क्या करूँ?
0: तो सिंपल है ना, तुम्हारे हाथ की रोटी मत खिलाओ, आंटी की खिला दो।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का।

0: Pepe Mirchi.
1: Escabana, pues cabana, sacabana.
2: Rabana.
1: Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: ¿Aló?
4: ¿Aló, Tejinder ji?
3: हाँ जी,
4: हाँ जी तेजेंद्र जी, मैं बोल रहा हूँ पासपोर्ट ऑफिस से। आपने अप्लाई कर रखा था पासपोर्ट?
3: जी, हाँ जी किया था।
4: हाँ, ये तेजेंद्र जी आपका थोड़ा लेट मिलेगा पासपोर्ट, आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था मैंने।
3: कितना लेट मिलेगा
4: आपको इसमें? एक सेकंड रुकिए, मैं चेक कर लेता हूँ। अरे, इनका तेजेंद्र का पासपोर्ट कब मिल रहा है? तत्काल में, आपने तत्काल में बनवाया ना इमरजेंसी में?
3: हाँ जी,
4: एक सेकंड। हाँ, इमरजेंसी का है सर। 3.5 महीने बाद मिलेगा आपको पासपोर्ट।
3: 3.5 महीने बाद?
4: हाँ जी
3: भाई साहब, तत्काल का क्या मतलब होता है? 5 दिन में मिलता है तत्काल का? तो
4: सर वो मुझे ही मालूम है, मेरे को क्यों समझा रहे हैं। असल में तेजेंद्र जी, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। आपके आसपास कोई है तो नहीं?
3: नहीं, कोई नहीं है।
4: मैं ये कह रहा था, हमारा एक बंदा है जिसकी शक्ल आपसे मिलती है, ठीक है?
3: अच्छा।
4: बिल्कुल वो डिक्टो कॉपी लगता है आपका, जीरोक्स लगता है। अच्छा, उसको निकलना है दुबई। वो वैसे तो निकल नहीं सकता अपने पासपोर्ट से क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी। तो हम कुछ दिन के लिए आपके पासपोर्ट पे से आपका फोटो हटा के, ना आपकी दाढ़ी होती तो चल जाता, उसका फोटो चिपका के आपके नाम से वो दुबई जाएगा। वो 3-4 आदमियों को ठिकाने लगा के वापस आ जाएगा, तो उसमें 3-4 महीने लगेंगे।
3: क्या बोल रहा है भाई? कौन? हेलो।
4: तो मैं उसको बोल देता हूँ, वो वहाँ पे वो आपके घर पहुँचवा देगा। आप बल्कि वो बंदा ही।
3: हेलो।
4: हाँ, बोलिए बोलिए।
3: क्या बोल रहा भाई?
4: आपके पासपोर्ट पे उसका फोटो लगा के आपके नाम से वो दुबई जाएगा। 2-3 को ठिकाने लगाना, वापस आ जाएगा, उसका जरूरी काम है।
3: मैं बोल रहा हूँ,
4: मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ।
3: क्या बोल रहा है? क्या
4: आप इतना भड़क क्यों रहे हो? काम आप थोड़ी करने जा रहे हो, काम तो वो लगाने जा रहे हैं ठिकाने।
3: नहीं, नहीं, बात क्या कर रहा है? पासपोर्ट पे किसी और को भेज रहा है
4: यार। आप मेरी तेजेंद्र जी,
3: नहीं
4: सोचो वो कितना भड़क रहा होगा। 3 आदमियों को उसको टपका के आना है दुबई में, उसकी भी तो भड़कन सोचो ना। अरे तो यार, आपका पासपोर्ट आपको वापस मिल जाएगा 1.5 महीने के लिए। आपका नाम यूज कर रहा है, आपका नाम यूज करने में क्या आपकी गाड़ी मांग रहा है? क्या गाड़ी यूज कर रहा है वो?
3: नाम बता पहले तू, कौन रहा है?
4: ये लकी डॉ निकल रहे हैं, वरना किसी और तेजेंद्र को भेज देते। आपका मौका लगा, आप ऐसे भड़क रहे हो उल्टा। मेरी बात सुनिए तेजेंद्र। तेजेंद्र, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और तुम रेडियो मिर्ची पे हो। मुझे शालिनी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुमने पासपोर्ट अप्लाई कर रखा है, तुम्हारा मुर्गा बनाया। भाई तुम बहुत गुस्से वाले हो, तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें दुबई भेज दूँ, उसे नहीं भेजू।
2: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: जा सिमरन, जा जी रहे अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
6: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
2: हिट गाने
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: 89.6
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन।
10: इट्स हॉट
11: यहाँ की लड़की बाबा, बदन पे साड़ी बाबा, माथे पे बिंदिया बाबा, कानों में बाली बाबा, पैरों में पायल बाबा, होठों पे लाली बाबा, हाय भोली भाली बाबा, हाय शर्मीली बाबा।
12: सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलस्तां हमारा।
13: ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

यहाँ का गुलशन जादू, यहाँ का जीवन जादू। बिरला टाटा बाबा, यहाँ का आटा बाबा, जूतों में बाटा बाबा, लड़की का चाटा बाबा। सचिन की बैटिंग बाबा, बच्चन की एक्टिंग बाबा, सुनील गावस्कर बाबा, कपिल द सिक्सर बाबा, लता मंगेशकर बाबा, जाकिर का तबला बाबा, भरतनाट्यम बाबा, यहाँ का भांगड़ा बाबा, यहाँ की लावणी बाबा, यहाँ का डांडिया बाबा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तान हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

0: जीते हैं मस्त होके मस्ती में लोग सारे, जो है मजा यहाँ पे वो नाम मजा कहीं पे। यहाँ की ईद बाबा, यहाँ दिवाली बाबा, यहाँ की होली बाबा, दुल्हन की डोली बाबा, चनिया चोली बाबा, मीठी बोली बाबा।
1: North, South, East or West, India is the best, the land of culture, the land of dreams, this is the land of you and me.
0: राजे शिवाजी बाबा, अकबर बादशाह बाबा, महात्मा गांधी बाबा, चाचा नेहरू बाबा, बाबा अंबेडकर बाबा, मदर टेरेसा बाबा।
1: We're taking it up and we're taking it down, this is the Indian sound, together so strong in God we trust, yeah, you cannot beat us.
0: ताज महल बाबा, चार मीनार बाबा, आम का अचार बाबा, यहाँ का प्यार बाबा, ऐश्वर्य राय बाबा, सुष्मिता सेन बाबा, ऑल इंडिया रेडियो बाबा, डीडी मेट्रो बाबा, दूरदर्शन बाबा।

यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलशन हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
7: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: मिलिन सोमन, आपकी इतनी फिट बॉडी है, क्या आपने कभी इस बॉडी का फायदा उठाया है? आ जा, दिखाता हूँ तुझे, झगड़ा करेगा मेरे साथ।
3: कभी झगड़ा नहीं किया, और टफ फिजिक का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो। गुड फॉर शो व्हिच इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट, I work very hard, so I need that fitness level.
2: And I need your motivation level, Milind Soman. Aap sun rahe hain Mirchi, It's Hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi, It's Hot.

0: होनी चाहिए, लंबी नहीं।
1: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार बार बार। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: लव।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ ना तो नींद आ जाती है।
3: क्यों नहीं हो रही पढ़ाई?
1: क्या करूँ?
2: अरे घोचू, तो लेटे लेटे पढ़ना, अच्छे से सो भी पाएगा रे तू।
4: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La virpa la burka. Mirchi, burka.
2: Hello.
3: Hi. Ye call बैंक से है. आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है. हमारे कस्टमर केयर से आपको पासवर्ड मिलेगा. पासवर्ड बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए किसी को ना दे और इसका दुरुपयोग होने से बचाएं.
4: देखिए जी, आपका पासवर्ड जेनरेट हो गया है, आप पासवर्ड लिख लीजिए प्लीज.
2: एटीएम वाला पासवर्ड है ना?
4: एटीएम वाला पासवर्ड है सर. ये पासवर्ड लिख लीजिए, मैं आपको बता देता
2: हूँ. एक मिनट मैं लिख लेता हूँ कहीं.
4: हाँ जी.
2: हाँ बोलिए.
4: 33501.
2: अच्छा
4: सर, एक सेकंड रुकिए, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ. शैलेंद्र जी, जरा विक्की का पासवर्ड बताइए जरा इनको. ये फोन लाइन पे है एटीएम वाला.
2: हेलो,
4: मेरी वाइफ के पास भी है, एक सेकंड होल्ड करिएगा. मैं फोन मिलाता हूँ. हेलो डार्लिंग, हाय.
5: हाय.
4: अच्छा ये बताओ, ये विक्की का पासवर्ड क्या है?
5: विक्की का पासवर्ड 33501. एक काम करिए ना, धोबी से पूछ लीजिए क्योंकि उसके पास भी है.
4: धोबी से
5: पूछ लीजिए.
4: अच्छा ये जो हमारे कपड़े धोता है, एक सेकंड.
2: हेलो
4: सर, एक सेकंड होल्ड करना, वो धोबी से भी कंफर्म कर.
6: ये बेल जा रही है.
4: हेलो भैया. हेलो भैया, मैं बैंक से बोल रहा हूँ. आप हमारे कपड़े धोते हो?
2: अरे भाई तू एक बात सुन, ये आपके हो
4: पास
2: क्या है?
4: आपके पास पासवर्ड होगा? 33501. हाँ सर, 33501.
2: हेलो.
4: हाँ जी सर. सर यही पासवर्ड है. मेरी बात सुनिए ना.
2: किससे पूछे जा रहे हैं?
4: किससे? मैं कंफर्म कर रहा हूँ ना सर आपके पास.
2: भाई ये क्या कंफर्म? भाई मेरा एटीएम कार्ड है.
4: ये एटीएम तो आपका तो पासवर्ड नहीं मिलेगा, पैसे कैसे निकलेंगे यार?
2: सिर्फ मुझे बताना है, सबको थोड़ी ना दुनिया में अल्लाह थोड़ी ना आता है.
4: आपको तो जल्दी इतनी मच रही है, आपको जल्दी इतनी मच रही है. कल का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लेते, उसमें भी आ रहा था. बेकार में एप्लीकेशन डाल दी. टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ लेते.
6: विकी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. तुमने पासवर्ड के लिए अप्लाई कर रखा था, तुम्हारा पासवर्ड अभी तक नहीं आया है. 33501.
2: किसने दिया मेरा नंबर?
6: आपका नंबर आशा ने दिया है, उन्होंने कहा था.
2: अरे मैं कुकड़ू को.
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
8: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें.
9: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
7: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
9: कम है के?
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6
7: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट
2: 89.6। यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: लगाया।
1: हाय दिस अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका फेवरेट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: गोविंदा, आपका अल्टीमेट फिटनेस टिप कौन सा है?
3: मुझे ऐसा लगता है योग और प्राणायाम जो है, इससे आपकी बॉडी जो है बहुत ही करेक्ट रहती है और आपको मतलब वो घबराहट नहीं होती है।
2: तो ये एडवाइस आप देंगे कंटेम्प्रेरी हीरोज को?
3: योग प्राणायाम तो करते ही होंगे वो लोग, मुझे ऐसा लगता है।
2: आपको क्या लगता है कौन कौन करता होगा? मैं आपको तीन नाम देती हूँ, इन तीनों में से बताइए। वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम।
3: ये तीनों एक्टर्स ऐसे हैं लोगों की मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी ज्यादा अच्छी है और कि पता नहीं कितने पैक निकले हुए हैं। उस जमाने में तो पूरी शाम में सब लोग हीरो लोग पैक ही लगाया करते थे, अब वो पैक उनके पेट पे आ गए। टेढ़ा मेढ़ा क्या नजर आ रहा है, ये पेट है इनका? ओहो, अच्छा अच्छा, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड वेरी गुड।
2: फिटनेस का पता नहीं लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर पर 110 फॉर चीची। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
5: पर दीदी, आवर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट।
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM मिर्ची 1 इट्स हॉट।
8: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot. Mirchi. Fresh Maal.
1: धमाल 4 में धमाल मचाने आ रहा है कहर।

0: इस गाने को आवाज दी है गुरु रंधावा ने। म्यूजिक एंड लिरिक्स बाय गुरु रंधावा, गिल मचरई एंड रॉनी अजनाली। धमाल 4 से सुनते रहिए कहर, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। 89.6, 89.6,
1: it's hot.

0: Mirchi. Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga.
2: हेलो
3: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए।
3: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
4: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: ये स्कीम मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा
3: है? रमेश बोल रहा हूँ सर। से
2: अभी कोई और बोल रही थी।
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
2: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
7: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
2: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ, आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे? सर
2: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है, नहीं भैया नहीं नहीं चाहिए मुझे।
8: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: हम सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
2: कोई बोल रहा है?
3: कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आपसे सर फोन मत काटिएगा।
9: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दे जरा हंस के।
10: थैंक यू
11: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
12: अर्ज किया है
13: इरशाद, इरशाद

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. With आईपी, send money starting from just QAR 5, and yes, with the best FX rates. Simple, सीधा, no tension. Check the आईपी app today for our 5, 10, 15, 20 offer. Valid till July 31st. आईपी, smaller fees, bigger smiles. TNC apply.
1: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
2: 89.6 FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: में ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट। अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
5: अरे यार, हॉलिडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स, गोल्ड एंड समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस। प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिवीजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC। विजिट मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
6: दोस्ती का उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
7: भाई साहब, सॉरी एंड थैंक यू। हमें दोस्ती नहीं, एंटरटेनमेंट चाहिए।
8: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
9: खूब मिलेगा, मिलेगा।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: हेलो शॉप्स, आवर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं,
1: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
0: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं,
2: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
0: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
3: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
4: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

क्या वो मोहब्बत जिसका हिसाब लग जाए, बोले वो तो लगे के रब्बा बच जाए, लड़ मरेंगे लोग आग लग जाए, चेहरे से तेरे जो नकाब हट जाए।

फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

क्या गुरूर करना अपनी अच्छाई पर, क्या गुरूर करना अपनी अच्छाई पर, किसी ना किसी की कहानी में हम भी गलत हैं। बट आप लोग एकदम सही जगह आए हैं। जी हाँ, सलाम नमस्ते, मैं हूँ मिर्चीशा और हम आ चुके हैं वीकेंड वाइब्स लेक आपको हफ्ते का पूरा हाल सुनाने की। कहाँ जा सकते हैं, क्या इवेंट्स अटेंड कर सकते हैं, क्या एग्जीबिशन अटेंड कर सकते हैं, सब कुछ बताऊंगी ऑन माय शो। लेकिन हाँ, ये बातों में सच्चाई जरूर है कि किसी ना किसी की जिंदगी में हम लोग गलत हैं। बट इट्स ओके, हम लोगों को पता भी नहीं है कि हम किसकी जिंदगी में गलत हैं और किसकी जिंदगी में सही। अपनी लाइफ एंजॉय करिए, किसी का बुरा ना चाहे, बस यही दो चीजें जो होती है ना लाइफ में वो इम्पोर्टेंट रखती हैं। बाकी तो बस जिंदगी चल रही है और हम लोग चला रहे हैं। बाकी ऐसी ही मजेदार बातों के साथ मेरे साथ बने रहिए क्योंकि शो अभी बाकी है गाइस। तो बने रहिए मेरे साथ, बताती हूँ अभी थोड़ी ही देर में कहा जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब कुछ ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 पे मिर्ची ईशा के साथ। इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hello, sir. Very good evening. सेल्यूलर से बोल रहा हूँ सर, हमारी एक स्कीम आई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको समझाऊँ। ये वॉइस मेल के लिए है, अगर आप चाहते हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती है सपोज माने आप, तो आप कोई भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको आगे भेज सकते हैं।
2: अच्छा,
3: आप हिंदी में अपना मैसेज छोड़ेंगे और हमारी मशीन उसको कन्वर्ट करके दूसरी लैंग्वेज में डब कर देगी सर, जिसका सर कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मंथली कोई चार्ज नहीं लगेगा। सर आप चाहेंगे ये स्कीम आपको दे दी जाए?
2: के पास है क्या ये सर्विस?
3: बिल्कुल सर, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है सर, जो आपका नॉर्मल प्लान चल रहा है उस प्लान के अकॉर्डिंग आपका बिल आएगा, सिर्फ आपकी एक फैसिलिटी बढ़ जाएगी।
2: जो क्या कॉस्टिंग पड़ेगा पर मैसेजेस का?
3: सर आप दिन में अगर 100 मैसेज भी भेजते हैं तो आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, आपका नॉर्मल रेंट रहेगा जो आपका चल रहा है अभी।
2: ठीक है,
3: बीप सुनने के बाद अपना मैसेज छोड़िएगा।
2: ओके अगम सर, मुझे आपके अंडर में काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप प्लीज मुझे अपनी टीम में रख लीजिए।
3: सर वेरी गुड, आपका मैसेज रिकॉर्ड हो गया सर, हमने इसको दूसरी लैंग्वेज में डब कर दिया, अब आपके बॉस ये सुनेंगे, सुनिए।
2: ये क्या है भैया?
3: सर ये आवाज तो आपकी लग रही है, मुझे लग रही है सेंटेंस इधर उधर हो गए।
2: तो भी मशीन चलाने आती भी है।
3: सर मैनेजर के अलावा किसी और को मैसेज देखे देखिए।
2: हेलो वीना मैम, प्लीज अभी जो आ रहा है प्रोजेक्ट उसके लिए मुझे नॉमिनेट कर लीजिए अपनी टीम में।
3: सर थैंक यू सो मच, आपका रिकॉर्ड हो गया, वीना मैम को ये सुनाई देगा।
2: मजाक कर रहे तू मेरे से?
3: सर मेरी बात सुनिए, ये जो मेरी बात सुनिए सर, सर सर सर सर सो सॉरी, आई एम सो सॉरी सर, जितना आप मुझ पे चिल्लाए हैं मैंने रिकॉर्ड कर लिया। देखिए अब सही आएगा, देखिए ये दूसरी लैंग्वेज में आएगा, रुकिए सर आप। हेलो मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए सर, मैं इतनी गाली नहीं सुन सकता सर, मैं इतनी।
4: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने तो रैंडमली आपका नंबर मिला दिया था सर, दिल्ली में सब आपको सुन रहे हैं, आप रेडियो मिर्ची में मुर्गा बन गया है आपका, प्लीज इतनी गाली मत दीजिए यार।
3: सर मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया, देखिए सुनिए क्या आया डब हो गए।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
7: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष, महापुरुष।
5: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
8: 89.6
5: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: everyone, my name is Mr. Bean, and meet my friend, Mr. Beer.
1: इस कैरेक्टर को तो आप अच्छे से जानते होंगे, बचपन से लेके बड़े होते तक हम ये देखते ही आए हैं। मैं बात कर रही हूँ मिस्टर बीन की। अगर आप भी मिस्टर बीन के फैन हैं मेरी तरह, तो आप जा सकते हैं DECC, जहाँ हो रहा है टॉय फेस्टिवल, जहाँ मिस्टर बीन का मैस्कट भी देखने को मिलेगा और बहुत सारी एक्टिविटीज भी करने को मिलेंगी। भाई देर किस चीज की है, एंट्री भी सिर्फ 50 रियाल है। अगर आप जाना चाहते हैं ना, तो इस हफ्ते या अगले हफ्ते भी जा सकते हैं, क्योंकि 31 जुलाई तक है। तो टेंशन नॉट, आराम से जाइए, बच्चों को साथ लेके जाइए, क्योंकि उनको मजा आने वाला है। समर वेकेशन और मजेदार हो जाएगा अगर आप बच्चों को लेके जाएंगे टॉय फेस्टिवल। इट्स ऑलवेज बीन अ ग्रेट प्लेजर जब भी आप टॉय फेस्टिवल जाते हो, एंड मैं हमेशा चाहती हूँ बीइंग एन अडल्ट एज वेल, वहां पे आपको मिलेंगी बहुत सारी और भी इंटरेस्टिंग चीजें करने के लिए। तो भाई तैयार हो जाइए, जाइए एंजॉय करिए बच्चों के साथ, बच्चा बन जाइए, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

आजकल ना एक स्पोर्ट सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है। जी हाँ, फुटबॉल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ आइस हॉकी स्केटिंग की। जी हाँ, अगर आपने ऑफ कैंपस देखा होगा तो उसमें काफी ज्यादा देखा होगा कि किस तरीके से मुकाबले चलते हैं आइस स्केटिंग की और कितने मजे तरीके से वो खेलते हैं एंड एंजॉय करते हैं। एंड वही अगर आप ये लाइव देखना चाहते हैं आपके कतर में, तो कतर आपको मौका दे रहा है आइस हॉकी ओपन हाउस देखने का, जो हो रहा है 11 जुलाई को 6 PM to 7 PM। एंड आइस हॉकी सीरीज गेम होने जा रही है 7:10 PM से लेके 8:20 PM तक। एंड ये सेम डे 11 जुलाई को ही होगी। एंड आइस स्केटिंग ओपन हाउस भी 8:30 PM से लेके 9:45 PM तक होगा। एंड इट इज टोटली फ्री। एक नया स्पोर्ट है, बच्चों के बीच में एक बीज बोने की जो हमारी हैबिट है वो जरूर होनी चाहिए। नया स्पोर्ट बच्चों को जरूर दिखाना चाहिए कि ये अलग है, नए तरीके से खेला जाता है, और जरूर इंटरेस्ट पैदा कीजिए बच्चों में एंड लेके जा सकते हैं। एंड ऑल्सो 14 जुलाई 2026 को हो रहा है कर्लिंग कम एंड ट्राई सेशन। जी हाँ, ट्राई भी कर सकते हैं। एंड इट इज एट 6 PM to 8 PM तक हो रहा है, टोटली फ्री है, फ्री आइस स्केटिंग हो रही है कतर में। भाई इससे अच्छा और क्या मौका हो सकता है। जल्दी से जाके अपना प्लान जो है इसी तरीके से बनाइए कि इस वीकेंड जा सके, तो एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ एक नया स्पोर्ट। एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: में ची स्टोरीज स्टोरी
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
6: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
7: बहुत कुछ होगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
10: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

गर्मियों की सबसे खास बात ये है कि गर्मियों में आते हैं खूब सारे मैंगो और आते हैं तरह तरह के मीठे मैंगो, और मैं बात कर रही हूँ यहाँ मैंगो फेस्टिवल की। थर्ड एडिशन ऑफ द पाकिस्तानी मैंगो फेस्टिवल होने जा रहा है आपके दोहा कतर में। इसको हम बा एग्जीबिशन के नाम से भी जाना जाते हैं। जुलाई 9 से ये शुरू हो रहा है ईस्टर्न स्क्वायर ऑफ सूक वाकिफ में। मिस करने वाला मौका नहीं है क्योंकि ये सिर्फ 10 दिन के लिए ही आपके पास आए हैं। 18 जुलाई को ये वाइंड अप हो जाएगा यहाँ से। तो आपको करना क्या, इस वीकेंड टाइम निकाल के जाना है और बहुत सारे मैंगो लेके आने हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वैरायटी आपको मिलने वाली है पाकिस्तान की डिफरेंट डिफरेंट रीजन से आई हुई, उसमें इंक्लूडेड है चौंसा, अनवर रतौल, सिंदरी एंड ऑल्सो दशहरी। तो ये सब वैरायटी आपको यहाँ मिलेगी। देखिए, मजेदार वीकेंड जाएगा, इंजॉय कर सकते हैं। मैंगो के अलावा आप मैंगो से बनी हुई बहुत सारी क्यूजींस भी इंजॉय कर सकते हैं। उसमें जैसे आप पानी पूरी कह लीजिए या डोसा कह लीजिए, मैंगो मैंगो बर्गर, मैंगो चिकन, सब कुछ आपको वहां मिलेगा अंडर वन रूफ। तो करना क्या है, इस वीकेंड जाना है, इंजॉय करना है। टाइमिंग आपको मैं बता रही हूँ, 4 PM से 10 PM तक रहेगा थ्रू आउट द ड्यूरेशन। मैंगो एक ऐसी चीज है ना जो खाने से ना आपके फेस पे ऐसे खुशी आ जाती है ना, तो आपको

आप बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशनल डेलिकेसीज भी मिलेंगी। एंड अगर आप जाना चाहते हैं, जरूर जाइए अपनी फैमिली के साथ, मनाइए मैंगो वीकेंड इस वीकेंड को और एंजॉय करिए। एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 101 इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: John Abraham, आपके हिसाब से the top fit boys of the Hindi film industry.
3: First reference is always going to be Varun Dhawan and I'll tell you why. क्योंकि वरुण का जो फिजीक है वो बहुत ही proportionate है. उसके legs बहुत ही strong है. Tiger Shroff, fantastic body. Ranveer Singh, extremely, extremely fit. And of course, Hrithik Roshan. Honestly, amongst all these, including myself, I think सबसे fittest इंसान हमारे इंडस्ट्री में is Akshay Kumar. And I mean holistically fit. He can survive anywhere. अगर आप उसको Mount Everest पे छोड़ दो, अगर आप उसको रेगिस्तान में छोड़ दो, Akshay Kumar will be the only guy who will survive and come out.
2: छोड़ने की जरूरत ही नहीं है जॉन अब्राहम. अक्षय कुमार इज द ओनली पर्सन इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो बाय चॉइस इन जगहों पर जाएंगे. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, बताओ सवाल क्या है?
0: मेरे घर के पास बहुत कबूतर है, परेशानी होती है यार, क्या करूं?
1: तुम्हें जब पता है कि इतने सारे कबूतर हैं, तो घोंसले के बाजू में घर मत बना, समझा?
2: रख, रख,

0: कतर टॉय फेस्टिवल को तो आप अच्छे से जानते ही हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कतर टॉय फेस्टिवल एक्टिवेशंस भी लागू हो चुके हैं हमारे दोहा कतर में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऐसी एक्टिवेशंस की जहाँ पे हर मॉल में आपको एक कैरेक्टर का सारा सेटअप मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट बारबीज, तो वो एक पर्टिकुलर मॉल में आपको बारबी का पूरा सेटअप मिलेगा। वहां जाके आपके बच्चे एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप अभी तक टॉय फेस्टिवल नहीं गए हैं तो जगह जगह मॉल्स में ये छोटे छोटे जो एक्टिवेशन लागू किए गए हैं दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर कुछ मैं आपको बताऊं उसमें से, तो बात करें पिक्सार की, तो पिक्सार आपको मिलेगा प्लेस वैंडम में, बारबी मिलेगी सिटी सेंटर में, और मोआना मिलेगी दोहा फेस्टिवल सिटी में। ऐसे ही बहुत से और मॉल्स हैं जहां पे आपको ये एक्टिवेशंस मिलेंगी। तो देखिए, ये एक फायदे का सौदा इसलिए भी है क्योंकि ये 30th सितंबर तक है। बच्चे एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ देयर वेकेशन एंजॉय कर सकते हैं हर मॉल में। किसी भी मॉल में जा रहे हैं वहां पे उनको टॉय फेस्टिवल से रिलेटेड हर चीज मिलेगी। बस करना ये है, जाना है मॉल, एंजॉय करना है, बस थोड़े से पैसे भी खर्चने हैं और एंजॉय कर लेना है। इस वीकेंड कहीं पे भी जाइए, आपको ये सारे एक्टिविटीज अभी से मिल जाएंगे। तो बस बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातों के साथ, इंटरेस्टिंग इवेंट्स के साथ। सुनते रहिए मुझे, यानी कि मिर्ची ईशा को ओनली ऑन 89.6 मिर्ची माने इट्स हॉट।
1: मिर्ची फ्रेश माल।
2: धमाल 4 में धमाल मचाने आ रहा है कहर।

0: इस गाने को आवाज दी है गुरु रंधावा ने। म्यूजिक एंड लिरिक्स बाय गुरु रंधावा, गिल मचरई एंड रॉनी अजनाली। धमाल फोर से सुनते रहिए कहर, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: हेलो तेजिंदर जी।
2: हाँ जी।
1: हाँ जी तेजिंदर जी, मैं बोल रहा हूँ पासपोर्ट ऑफिस से। आपने अप्लाई कर रखा था पासपोर्ट?
2: जी, हाँ जी किया था।
1: हाँ ये तेजिंदर जी, आपका थोड़ा लेट मिलेगा पासपोर्ट, आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था मैंने।
2: कितना लेट मिलेगा
1: आपको इसमें? एक सेकंड रुकिए, मैं चेक कर लेता हूँ। अरे इनका तेजेंद्र का पासपोर्ट कब मिल रहा है? तत्काल में, आपने तत्काल में बनवाया ना इमरजेंसी में?
2: हाँ जी।
1: एक सेकंड, हाँ इमरजेंसी का है सर। 3.5 महीने बाद मिलेगा आपको पासपोर्ट।
2: 3.5 महीने बाद?
1: हाँ जी।
2: भाई साहब तत्काल का क्या मतलब होता है? 5 दिन में मिलता है तत्काल का? तो
1: सर वो मुझे ही मालूम है, मेरे को क्यों समझा रहे हैं। असल में तेजेंद्र जी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। आपके आसपास कोई है तो नहीं?
2: नहीं कोई नहीं है।
1: ये कह रहा था हमारा एक बंदा है जिसकी शक्ल आपसे मिलती है, ठीक है?
2: अच्छा।
1: बिल्कुल वो डिक्टो कॉपी लगता है आपका, जीरोक्स लगता है। अच्छा, उसको निकलना है दुबई। वो वैसे तो निकल नहीं सकता अपने पासपोर्ट से क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी। तो हम कुछ दिन के लिए आपके पासपोर्ट पे से आपका फोटो हटा के ना, आपकी दाढ़ी होती तो चल जाता, उसका फोटो चिपका के आपके नाम से वो दुबई जाएगा। वो 3-4 आदमियों को ठिकाने लगा के वापस आ जाएगा, तो उसमें 3-4 महीने लगेंगे।
2: क्या बोल रहा है भाई? कौन? हेलो।
1: तो मैं उसको बोल देता हूँ, वो वहाँ पे वो आपके घर पहुँचवा देगा। आप बल्कि वो बंदा ही।
2: हेलो।
1: हाँ बोलिए बोलिए।
2: क्या बोल रहा है भाई?
1: आपके पासपोर्ट पे उसका फोटो लगा के आपके नाम से वो दुबई जाएगा, 2-3 को ठिकाने लगाना वापस आ जाएगा, उसका जरूरी काम है।
2: मैं बोल रहा हूँ,
1: मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ।
2: क्या बोल रहा है? क्या
1: आप इतना भड़क क्यों रहे हो? काम आप थोड़ी करने जा रहे हो, काम तो वो लगाने जा रहे हैं ठिकाने।
2: नहीं बात क्या कर रहा है, पासपोर्ट पे किसी और को भेज रहा है
1: यार। आप मेरी
2: तेजेंद्र जी, नहीं
1: सोचो वो कितना भड़क रहा होगा। 3 आदमियों को उसको टपका के आना है दुबई में, उसकी भी तो भड़कन सोचो ना।
2: मेरे नाम जाके
1: अरे तो यार आपका पासपोर्ट आपको वापस मिल जाएगा, 1.5 महीने के लिए आपका नाम यूज कर रहा है। आपका नाम यूज करने में क्या आपकी गाड़ी मांग रहा है? क्या गाड़ी यूज कर रहा है वो?
2: नाम बता पहले। कौन रहा है?
1: ये लकी डॉ निकल रहे हैं, वरना किसी और तेजेंद्र को भेज देते। आपका मौका लगा, आप ऐसे भड़क रहे हैं उल्टा। मेरी बात सुनिए तेजेंद्र। तेजेंद्र मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और तुम रेडियो मिर्ची पे हो। मुझे शालिनी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुमने पासपोर्ट अप्लाई कर रखा है, तुम्हारा मुर्गा बनाया है भाई। तुम बहुत गुस्से वाले हो, तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें दुबई भेज दूँ, उसे नहीं भेजूँ।
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
5: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
6: कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन, 89.6
7: FM, मिर्ची 1, इट्स हॉट।

देखिए, नाचना गाना हो चुका पुराना, अब चाहिए नया टैलेंट। और अगर आपके पास भी है ऐसा नया टैलेंट जो आपको सबसे अलग करता है, तो आइए, कतर लेके आ रहा है ऐसा एक हंट। जी हाँ, कतर गॉट टैलेंट आ चुका है आपके लिए। मिर्ची वन कतर लेके आ रही है ये सुनहरा मौका, लाइट्स कैमरा टैलेंट शो करना है आपने अपना। जी हाँ, और अगर आप रेडी है ना, तो जल्दी से जाके फोन उठाइए, अपना वीडियो बनाइए, 30-40 सेकंड्स का वीडियो बना के हमें भेज दीजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो है 5000-1896 पे, जहाँ पे हम आपको न्योता दे रहे हैं, ओपन फॉर ऑल। जी हाँ, कोई एज मैटर नहीं करती है, जिस भी एज के हैं आप, जल्दी से जाके अपना वीडियो बना के भेजिए। और फिर और कतर्स गॉट टैलेंट में आपको मौका मिल सकता है अपना परफॉर्मेंस दिखाने का ऑन स्टेज। सो जल्दी से आइए और अपने आप को रजिस्टर कराइए, एंड स्टे ट्यून्ड विद अस ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

ला ला ला ला ला ला ला ला हो गई बे, ला ला ला ला तो नहीं हो रही भाई, मैसी मैसी हो रही है। मैसी बीइंग मैसी, जी हाँ, हाल फिलहाल में मैंने देखा मैच पहली बार और देख लिया अर्जेंटीना वर्सेस इजिप्ट, और यहाँ देख के मैं हैरान हो गई किस तरीके से मैसी ने कमबैक किया। पहले वो 0-2 पे थे, यानी कि अर्जेंटीना के 0 गोल थे और इजिप्ट के 2 गोल हो चुके थे, और जब मैच फ्लिप हुआ, आय हाय हाय, मजा आ गया यार। मैसी ने जो कमाल दिखाया एंड मोमेंट पे 3-2 हो गया एंड जीत गया अर्जेंटीना, और मजा आ गया ये मैच देख के। लेकिन अगर आपने मैच क्वार्टर फाइनल देखना है तो आज होने जा रहा है स्पेन एंड बेल्जियम का मैच, और देखना होगा कि कौन जीतेगा और बेल्जियम लेके जाएगा खिताब या फिर स्पेन। ऐसी ही चटपटी बातों के साथ सुनाती रहूंगी मस्त गाने और मस्त बातों के साथ सिलसिला जारी है 89.6 मिर्ची 1 पे, इट्स हॉट।

0: में ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
6: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
7: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.

You know what? It made me realize that zimmedari ki ek khubi hoti hai, ye aapko bigadne nahi deti. जी हाँ, बिगड़ने का समय ही नहीं है क्योंकि जिम्मेदारियाँ इतनी आ जाती है एक एज के बाद कि आप उसमें इतना महफूज हो जाते हो कि आपको समझ में नहीं आता कि यू नो कि बिगड़ना क्या होता है, आपको समझ ही नहीं आता क्योंकि आप हर तरीके के कामों में बिजी हैं, ऑक्यूपाइड हैं, बच्चे हो, अपने बड़े हो, सबका ध्यान रख रहे हैं, लेकिन अपना ध्यान भी रखना उतना ही जरूरी है। आप भी बहुत प्रेशियस हैं, अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सेल्फ केयर इज सेल्फ लव एंड इट्स नॉट सेल्फिश, ये सब अलग अलग चीजें हैं। अपना ध्यान नहीं रखोगे तो घर का कैसे रखोगे, है ना, यही बोलते हैं ना। तो बस ये एक ऐसी लाइन है जो सब पे लागू होती है, घर का चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, सबके लिए ये लागू होती है कि अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे आप सबका ध्यान कैसे रख पाओगे। तो बस इसी के साथ आज हमारा समय हो चुका है, जाने का हो चुका है टाइम। अब आपसे लेती हूँ अलविदा, मिलूंगी आपको अगले वीकेंड इसी समय इसी वक्त और ढेर सारी बातें और इवेंट्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शबा खैर, सी यू नेक्स्ट वीकेंड, टाटा एंड स्टे ट्यून्ड विद अस ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, bold eye.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: अनिल कपूर सर, ये सवाल हम आपसे 365वीं बार पूछ रहे हैं कि आपकी फिटनेस का राज क्या है?
3: हेल्थ ऐसी बनाओ, काम ऐसा करो कि आप 40, 50 साल, 60 साल तक आराम से वैसे ही काम करते रहो। मीठा खाना तो थोड़ा थोड़ा, आपको मीठा अगर सूट नहीं करता तो हफ्ते में एक बार खाइए, और खाना तो थोड़ा सा खाइए। आपको नमकीन पसंद है, उसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ही नमकीन खाते रहें। आपको चावल पसंद है तो दबा के आप चावल ही खा रहे हैं आप, यू नो, तो हर चीज़ करनी चाहिए, मगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके। यू शुड वर्क इट आउट एंड बैलेंस एवरीथिंग इन लाइफ एंड डू एवरीथिंग इन लाइफ, एंड दैट्स आई फील इज द मंत्रा फॉर योर फिटनेस। यू डू एवरीथिंग बट डू इट इन मॉडरेशन एंड डू इट व्हाट मेक्स यू हैप्पी।
2: हेल्थ टिप आपने दिया एकदम क्लास, क्योंकि अनिल कपूर आप आदमी एकदम झकास। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑन
0: बॉलीवुड बोल डाल।
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, bold eye. Only on Mirchi, it's hot.

0: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए।
1: बूढ़ी बाबा, मेरे पति को मेरे हाथ की रोटी अच्छी नहीं लगती, क्या करूँ?
0: तो सिंपल है ना, तुम्हारे हाथ की रोटी मत खिलाओ, आंटी की खिला दो।
2: मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे अलकट हंस।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: यादें कभी पुरानी नहीं होती, सिर्फ उन्हें याद करने की वजह बदल जाती है। इसलिए कुछ गाने, कुछ फिल्में और कुछ आवाजें सालों बाद भी बिल्कुल वैसी ही महसूस होती हैं। हिट होना अलग बात है, याद रह जाना वो बहुत बड़ी बात है। और शायद इसलिए बॉलीवुड में सबसे मुश्किल काम ब्लॉकबस्टर बनाना नहीं, एक लेगेसी बनाना है। आज के काउंटडाउन में भी कुछ नए गाने होंगे, कुछ पुरानी यादें होंगी और कुछ ऐसे सवाल होंगे जो शायद आप घर ले जाएंगे। हाय, मैं हूं सुरेन एंड दिस इज द मिर्ची टॉप 20, इंडिया का सबसे डेफिनेटिव हिंदी फिल्म म्यूजिक / बॉलीवुड म्यूजिक काउंटडाउन। और शुरुआत कर रहा हूं विद द फर्स्ट सॉन्ग, जो है नंबर 20 की पोजीशन पर। मुझे लगा था शायद ये अलविदा कहने वाला है, लेकिन नहीं, ये हमारे लिए थोड़ा और रुक गया है। द ग्रेटेस्ट लव सॉन्ग फ्रॉम लास्ट ईयर, दिस इज सैयारा।
4: नंबर 20।

Cocktail 2 एक लंबी लिस्ट का हिस्सा बन गया है. Films that created some excitement at the start, लेकिन उसके बाद, well, they just exist. इनके बारे में हमें पता है, लेकिन इनके साथ वो कनेक्शन नहीं बन पाया है. कभी कभी किसी फिल्म की सबसे बड़ी पब्लिसिटी उसका ट्रेलर नहीं होती, उसका गायब हो जाना होती है. पिछले हफ्ते एक फिल्म ने पूरे देश को एक ही सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया. सतलज रिलीज हुई, लोगों ने देखनी शुरू की और फिर रातों रात फिल्म हटा दी गई. एक वजह भी बताई गई पर वजह कन्विंसिंग नहीं थी. बहस शुरू हो गई लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात घूमती रही, अगर कोई कहानी इतनी खतरनाक है कि उसे देखना ही नहीं चाहिए तो उसे हटा देने के बाद लोग उसे और ज्यादा क्यों ढूंढते हैं. शायद क्योंकि इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी होती है, जिस दरवाजे पर नो एंट्री लिखा हो सबसे पहले वही दरवाजा खोलने का मन करता है. और इंटरनेट के जमाने में एक बार कोई चीज दुनिया के सामने आ गई, उसे मिटाना शायद उसे और ज्यादा फैला देने जैसा होता है. नंबर 18 पर इस हफ्ते है तू ही दिसदा भूत बंगला से, एंड देन एक ऐसी फिल्म जिसने किसी कंट्रोवर्सी से नहीं सिर्फ लोगों की मोहब्बत से अपनी जगह बनाई है. दिलजीत दोसांझ सतलज में भी हैं और इस फिल्म में भी हैं. फ्रॉम मैं वापस आऊंगा. और नंबर 17 दिस इज मस्कारा. नंबर 17.

Wow, the craziest songs from Dhurandhar 2. Ye tha Main Aur Tu by Jasmine Sanilas. And I don't know agar Dhurandhar ek sachi kahani hai ya it's fiction. But Bollywood filmmakers ko sachi kahaniya pasand badi hai. Which is why we love our biopics. And ek aur biopic dekhne ke liye ab janta utsuk hai. Sourav Ganguly ki biopic Dada. क्योंकि इस हफ्ते उनकी बायोपिक का फर्स्ट लुक आ गया है एंड मैं शायद माइनॉरिटी में हूं लेकिन मुझे क्रिकेट बायोपिक्स का कॉन्सेप्ट ही फ्लॉड लगता है क्यों ऐसा क्यों बोल रहा है ये लड़का वेल क्योंकि कुछ जिंदगियां एक फिल्म में नहीं समा पाती सोचिए सौरव गांगुली लॉर्ड्स में एक डेब्यू सेंचुरी मैच फिक्सिंग के बाद इंडियन क्रिकेट की कमान संभाली देन 2002 में वो नैटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल एंड देन आया उनका सबसे मुश्किल चैप्टर ग्रेग चैपल एज द कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम उस वक्त सौरव कप्तान थे फिर टीम से बाहर हो गए और फिर एक कमबैक भी हुआ एंड देन यू गॉट क्रिकेट के बाद की जिंदगी सिर्फ यही कहानी सुनाने अगर बैठोगे तो 10 घंटे निकल जाएंगे एंड सौरव गांगुली द क्रिकेटर तो एक तरफ है इसके अलावा सौरव गांगुली द पर्सन द ह्यूमन बींग भी तो दिखाओगे और यही वजह है कि मुझे लगता है कि क्रिकेट बायोपिक्स अक्सर स्कोर कार्ड दिखा देती हैं क्रिकेटर को नहीं इसलिए राजकुमार राव और विक्रमादित्य मोटवाने पर पूरा भरोसा होने के बाद भी मैं सौरव गांगुली की बायोपिक को लेकर थोड़ा स्केप्टिकल हूं क्योंकि कुछ कहानियां फिल्म नहीं वक्त मांगती है सिर्फ एक एमएस धोनी की बायोपिक थी विच वर्क फॉर सम रीजन बट उसके अलावा 83 अजहर नॉट सो मच नंबर 15 पर इस हफ्ते डेब्यू कर रहा है एक नया गाना मेरे फेवरेट आर्टिस्ट तलविंदर की आवाज में पल पल जीना मुहाल गाना याद है ना वेल ये गाना है क्यों फ्रॉम वेलकम टू द जंगल एंड इट्स हियर ऑन द मिर्ची टॉप 20 नंबर

0: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
4: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
5: मिर्ची इट्स हॉट
6: अर्ज किया है
7: इरशाद इरशाद

0: आईपी पेमेंट्स का वाह तरीका. विद आईपी सेंड मनी स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट QAR 5 एंड यस विद द बेस्ट FX रेट्स. सिंपल, सीधा, नो टेंशन. चेक द आईपी ऐप टुडे फॉर आवर 5, 10, 15, 20 ऑफर वैलिड टिल जुलाई 31st. आईपी, स्मॉलर फीस, बिगर स्माइल्स. TNC अप्लाई.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते. जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है.
2: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6 FM
4: मिर्ची 1. It's
5: hot.
6: Suren ke saath only on Mirchi. It's hot.
7: Number 14.

अनपॉपुलर ओपिनियन बट रोमकॉम्स आर डेड। और शायद सबसे दुख की बात ये नहीं है, सबसे दुख की बात ये है कि हमें पता भी नहीं चला कि ये कब हुआ। नंबर 13 पर इस हफ्ते है तुझको फ्रॉम कॉकटेल बाय अरिजीत सिंह। और इस गाने को सुनते ही मुझे वो वक्त याद आ गया जब बॉलीवुड हमें प्यार पर यकीन दिला देता था।

0: एक लड़का, एक लड़की, थोड़ी सी नोकझोंक, थोड़ी सी दूरियां, और हम दो घंटे उनके साथ जी लेते थे।
1: तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही, तुमसे ही।
0: फिर गीत आई और अचानक पूरे देश को लगा यार काश जिंदगी में कोई गीत मिल जाती।

0: एंड देन यू हैड बनी और नैना. हम सबको लगा शायद प्यार और सपने दोनों साथ चल सकते हैं. उसके बाद पता ही नहीं चला रोम कॉम्स कहाँ खो गए. फिल्में आज भी बनती हैं, लड़के लड़कियां आज भी मिलते हैं, डेट्स पे जाते हैं, उनके ब्रेकअप्स होते हैं, लेकिन वो धड़कन, वो तड़प, वो थिएटर से बाहर निकलते वक्त दिल का हल्का सा भर आना, वो कहीं रह गया. रोम कॉम्स आर डेड बट नॉट रोमांस. और फिल्में शायद बुरी हो बट कभी कभी उन बुरी फिल्मों में बहुत अमेजिंग म्यूजिक मिलता है. लाइक अ हंसी तो फंसी, पीपल लव द सॉन्ग ज़हन नसीब द मोस्ट. लेकिन मुझे, वेल आई फेल इन लव विद अ कंप्लीटली डिफरेंट सॉन्ग. आज वी रिवाइंड दिस सॉन्ग बाय सनम पुरी.
1: टॉप 20 रिवाइंड.

0: हुसैन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: गोविंदा, आपका अल्टीमेट फिटनेस टिप कौन सा है?
4: मुझे ऐसा लगता है योग और प्राणायाम जो है, इससे आपकी बॉडी जो है बहुत ही करेक्ट रहती है और आपको मतलब वो घबराहट नहीं होती है।
3: तो ये एडवाइस आप देंगे कंटेम्प्रेरी हीरोज को?
4: योग प्राणायाम तो करते ही होंगे वो लोग, मुझे ऐसा लगता है।
3: आपको क्या लगता है कौन कौन करता होगा? मैं आपको तीन नाम देती हूँ, इन तीनों में से बताइए। वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम।
4: ये तीनों एक्टर्स ऐसे हैं, इन लोगों की मुझे ऐसा लगता है कि बॉडी ज्यादा अच्छी है और पता नहीं कितने पैक निकले हुए हैं। उस जमाने में तो पूरी शाम में सब लोग हीरो लोग पैक ही लगाया करते थे, अब वो पैक उनके पेट पे आ गए। टेढ़ा मेढ़ा क्या नजर आ रहा है, ये पेट है इनका? ओहो, अच्छा अच्छा, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड वेरी गुड।
3: फिटनेस का पता नहीं लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर पर 110 फॉर चीची। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: आवर बिजनेस इज आवर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस।
6: पर दीदी, आवर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट।
7: Qatar ka number one radio station.
8: 89.6
9: FM, Mirchi 1. It's hot.
0: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
10: Number 12.

0: इतने महीने बाद भी आफ्टर वॉचिंग बोथ द फिल्म्स एक बात है जो परेशान करती है मुझे अब भी. इज धुरंधर अ रियल लाइफ स्टोरी? क्या इसके कैरेक्टर्स सच्चे हैं? आखिर सच क्या है? इस हफ्ते एक और जासूस की कहानी रिलीज हुई बाय द नेम ऑफ अल्फा. मेरे कई दोस्त हैं जिन्होंने अल्फा देखी और एक बात बार बार सुनने को मिली, पर्सपेक्टिव. और तब मुझे एहसास हुआ कि हर सच के शायद तीन अलग अलग वर्जन होते हैं. एक जो वाकई हुआ है, दूसरा जो हमें बताया गया है, और तीसरा जो हम मान लेते हैं. अब वो चाहे उरी हो, धुरंधर हो या फिर अल्फा हो, सिनेमा सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, वो हिस्ट्री को इंटरप्रेट भी करता है. और वही मेरी सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है. मैं हीरो देखने थिएटर नहीं जाता, मैं सच के जितना करीब हो सकता हूँ उतना पहुंचना चाहता हूँ. बाकी फैसला आप कीजिए. फिल्म किसकी थी, पर्सपेक्टिव किसका था? अल्फा वेल इज गेटिंग मिक्स्ड रिएक्शंस फ्रॉम द ऑडियंस, बट हाँ, YRF की स्पाई यूनिवर्स पक्का मुश्किल में है. दे बैडली नीड अ रीसेट. नंबर 11 पर है एक और नई फिल्म, बेबी डू डाई डू. आई होप आई गॉट द प्रोनाउंसिएशन राइट. और अफसोस, एक इतनी इंटरेस्टिंग असैसिन थ्रिलर को इंट्रोड्यूस किया गया है इश्क कमीना 2.0 से. कभी कभी सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट फिल्म में नहीं, उसकी म्यूजिक स्ट्रेटजी में होता है.
1: नंबर 11.
2: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो. हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: नहीं नहीं हेल्पलाइन मिर्ची, अपना सवाल क्या है वो बता बच्चू।
1: अरे भाई क्या बोलूं आपको, इधर घर ढूंढना इतना टफ है, कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा, क्या करूँ।
2: अबे सबसे पहले तो ये बता कि तू किसका घर ढूंढ रहा है, तभी तो हेल्प कर पाऊंगा ना।
3: मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Number 10. Hey!

बॉलीवुड को समर कॉमेडीज बनाना बहुत अच्छी तरह आता है, जैसे अभी चटनी फ्रॉम धमाल 4, भोजपुरी फ्लेवर, फुल ऑन मजे, एंड गाना चलेगा, फिल्म अपना काम कर जाएगी, एंड देन यू हैव अ वाव फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है। इसके बारे में ज्यादा कुछ वैसे अब कहने को है नहीं, फिल्म आई फिल्म गई, इन गाना रह गया नंबर 9 पर। लेकिन फिर कुछ फिल्में होती हैं जो सिर्फ रिलीज नहीं होती, एक दौर को डिफाइन कर देती हैं। इस हफ्ते लोग एक फिल्म के 10 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, सुल्तान। और मुझे लगता है ये सेलिब्रेशन सिर्फ सुल्तान का नहीं है, ये उस सलमान खान का है जिसके सामने बॉक्स ऑफिस ने घुटने टेक दिए थे। वॉन्टेड, दबंग, रेडी, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर, किक, बजरंगी भाईजान, प्रेम रतन धन पायो। उस वक्त फिल्म कितनी अच्छी थी ये फ्राइडे के बाद पता चलता था, लेकिन फ्राइडे से पहले एक बात सबको पता होती थी, सलमान खान की फिल्म एक त्योहार है। फिर सुल्तान आई, और आज अगर पीछे मुड़कर देखोगे तो लगता है कि वो सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं थी, शायद वो एक ईरा का लास्ट स्टैंडिंग ओवेशन था। उसके बाद हिट से ज्यादा सवाल आए ऑन फिल्म्स लाइक रेस 3, दबंग 3, अंतिम, राधे, किसी का भाई, किसी की जान, एंड देन सिकंदर। और पिछले 10 सालों से फैन सिर्फ एक ही चीज का इंतजार कर रहे हैं, दैट वन सलमान खान फिल्म जो थिएटर्स में वो पागलपन फिर क्रिएट कर दे, जिसके बाद पूरा देश सिर्फ एक ही बात कहे, भाई इज बैक। मेरा पिक ऑफ द वीक उसी फिल्म से है जिसके 10 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं सब, पापॉन की आवाज में, दिस इज बुल्लेया फ्रॉम सुल्तान, अ विशाल शेखर कॉम्पोजिशन। पिक ऑफ द वीक।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: हेलो
2: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
1: हाँ जी बोलिए।
2: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
1: आप मुझे पैसे दोगे?
3: हाँ।
1: हिडन चार्जेस?
3: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
1: कौन बोल रही है?
2: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
1: स्कीम मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
4: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
1: हेलो कौन बोल रहा है?
2: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
1: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
3: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
1: हेलो मैडम।
2: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
1: कौन बोल रहा है?
2: रमेश बोल रहा हूँ सर। से
1: अभी कोई और बोल रही थी।
2: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
1: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
5: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
1: कौन बोल रहा है?
2: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
1: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
6: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
1: कौन बोल रहा है भैया?
2: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
1: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है। नहीं भैया नहीं चाहिए मुझे।
7: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
2: हम सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
1: कोई बोल रहा है?
2: कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा है। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आपसे सर फोन मत काटिएगा।
8: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दे जरा हंस के।
9: थैंक यू।
10: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
11: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
12: Why go outside to see a doctor when healthcare can come to you?
13: With KIMS Health at Home, get doctor consultations, nursing care, physiotherapy, blood sample collection and more, all at one place. Call 5572-7387 today.
14: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
15: हमारी चोरियां छोरों से कम है के?
16: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
17: कम है के?
18: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
19: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
15: नंबर 8।

यार एक बात माननी पड़ेगी, इट फील्स सो गुड टू हियर नीरज श्रीधर वॉइस अगेन, लेकिन इसी गाने ने मुझे एक सच्चाई से मिलवा दिया। हॉलीवुड अपने लेजेंड्स को सेलिब्रेट तो बहुत करता है, बस उन्हें हायर करना बंद कर देता है। नीरज श्रीधर की आवाज आज भी उतनी ही फ्रेश लगती है, फिर नए गाने उनके पास क्यों नहीं जाते? और सिर्फ सिंगर्स ही नहीं, कंपोजर्स भी। एक सवाल आप खुद से पूछिए, आखिरी शंकर एहसान लॉय एल्बम आपने कौन सी सुनी थी, जिसके गाने आपने रिपीट पर सुने?

जिसके लिरिक्स आज भी याद है आपको। सितारे जमीन पर जो आमिर खान की फिल्म थी उसमें उन्हीं का म्यूजिक था, लेकिन एल्बम वैसे कनेक्ट नहीं कर पाई जितना सबने सोचा था। और उसके बाद इंडस्ट्री फिर नए नामों की तरफ मुड़ जाती है। अजीब बात है राइट। अब से एक महीने बाद we all will be celebrating 25 years of one of the most iconic albums ever.

चलता है। पूरा बॉलीवुड इस एल्बम को सल्यूट करेगा, उसकी लेगेसी सेलिब्रेट करेगा, लेकिन जब अगली बड़ी फिल्म बनेगी फोन शायद किसी और कंपोजर को जाएगा। नया हमेशा बुरा नहीं होता, लेकिन नया हमेशा बेहतर भी नहीं होता। नंबर 6 पर है कहर बाय गुरु रंधावा, और शायद यही आज के बॉलीवुड म्यूजिक का टेम्पलेट है। नंबर 6।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: यार तूने सुना एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
4: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
7: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
8: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
9: खूब मिलेगा,
10: मिलेगा। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
0: Only on Mirchi. It's hot. Number 5.

शरारत 20 हफ्तों तक जिस गाने ने नंबर वन पर रूल किया आज पहली बार किसी और पोजीशन पर है। और इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि एक गाना नीचे आया है, इसका मतलब ये है कि इस काउंटडाउन को एक नया नंबर वन सॉन्ग मिलने वाला है। वैसे शरारत का मतलब होती है एक छोटी सी प्यारी सी गलती, अ प्लेफुल मिस्टेक। लेकिन बॉलीवुड में कुछ चीजों के साथ शरारत करने की इजाजत नहीं होती, कुछ फिल्मों के साथ, कुछ एल्बम्स के साथ, क्योंकि वो सिर्फ हिट नहीं होती, वो यादें बन जाती हैं। नंबर चार पर इस हफ्ते है चुनरी चुनरी फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है। गाना तो वापस आ गया लेकिन वो फीलिंग नहीं आई, और वही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्लासिक को रिक्रिएट करना आसान है, उसकी रूह को वापस लाना नामुमकिन के बराबर। इसलिए आवारापन 2 को लेकर इतनी एक्साइटमेंट है। आवारापन सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो इमरान हाशमी की वो दुनिया थी जहां गाने खत्म होने के बाद भी हमारे दिलो दिमाग से निकल नहीं पाए। एंड देन वी हर्ड ऑफ आवारापन 2, जिसका नया गाना वे जुनून हमने पहली बार सुना।

Now on first listen, लगा ठीक है. दूसरी बार सुना तो लगा एक सेकेंड जरा रुको. And then तीसरी बार I had goosebumps. ये गाना हिट होने की कोशिश ही नहीं कर रहा, ये आपके अंदर उतरना चाहता है, बिल्कुल स्लो पॉइजन की तरह, जहर की तरह. और तब समझ आया कि लोगों ने वो बात क्यों बोली थी. अखा बॉलीवुड एक तरफ, इमरान हाशमी एक तरफ. My special request of the week is the same team that is giving us Ve Junoon in Awarapan 2. Imran Hashmi aur unke saath is gaane ke composer Mithun. Aur isi combo ne ek aur gaane mein jadoo bikhera tha. Jab kai baar dil tootne ke bawajood phir mohabbat karne chalta hai. Special request song.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: मिलिंद सोमन, आपकी इतनी फिट बॉडी है, क्या आपने कभी इस बॉडी का फायदा उठाया है? आ जा, दिखाता हूँ तुझे, झगड़ा करेगा मेरे साथ।
4: कभी झगड़ा नहीं किया, और टफ फिजिक का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो। गुड फॉर शो व्हिच इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट, आई वर्क वेरी हार्ड, सो आई नीड दैट फिटनेस लेवल
3: एंड आई नीड योर मोटिवेशन लेवल। मिलिंद सोमन, आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
2: Only on Mirchi. It's hot.
5: Hello, Sharps. Our product is phenomenal. One of a kind, but still profit nahi ho raha hai. Maine Baba Ji se advice li to kehte hain.
6: Office ke toilet mein toilet paper white nahi, yellow lagao. Profit aayega.
5: Relative se advice lo to kehte hain.
7: Kaam ko time do. 25 ghante kaam karo. Dark circles honge to future bright hoga.
5: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
8: भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहाँ तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
9: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now 7070-7687.
0: Only on Mirchi. It's hot.
10: Number 3.

0: ऊंचा लंबा कट फ्रॉम वेलकम टू द जंगल। हाय, बॉलीवुड सीक्वल्स बहुत बनाता है, लेकिन इंसान, एक इंसान के सीक्वल्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस हफ्ते रणवीर सिंह टर्न्ड 41 और मुझे एहसास हुआ कि पिछले 16 सालों में मेरी मुलाकात 3 अलग अलग रणवीर सिंह से हुई है।
1: मैं तो बॉलीवुड का सब्सक्राइबर रहा हूँ अपने बचपन से, लेकिन ओवर द इयर्स हमारी इंडस्ट्री में भी एवोल्यूशन आया है। जैसे कि पहला था, आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। थिंग्स आर लॉट मोर कॉर्पोरेट, लॉट मोर स्ट्रीमलाइंड, प्रोफेशनैलिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है इंडस्ट्री में। तो मुझे खुशी है कि मैं ऐसे टाइम पर आया हूँ जब अलग टाइप की फिल्में बन रही हैं और इंडस्ट्री इतनी एक्सपैंड हो गई है। मैं आदि सर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी पहली फिल्म दी, और मेरे तो बचपन का सपना पूरा हो गया जी, मैं क्या बताऊँ।
0: एक वो रणवीर था जो हमें बैंड बाजा बारात के बाद दिखा, नया, बेचैन, ओवर द टॉप। जैसे हर इंटरव्यू में वो दुनिया को ये यकीन दिलाना चाहता था कि मैं यहाँ टिकने आया हूँ।
2: क्या बोलूँ यार, इट्स अ वेरी ब्लेस्ड टाइम, अच्छा टाइम चल रहा है, टचवुड कुछ तो अच्छा किया होगा। बट ट्रूथ बी टोल्ड, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। इट्स लाइक लाइफ हाईलाइट आफ्टर लाइफ हाईलाइट। आई एम लाइक, व्हाट्स गोइंग ऑन, आई डोंट नो व्हाट एल्स टू डू बट सेलिब्रेट। And people are recognizing that now more than ever before. You know, they did kind of in like 13, 15. There was Lutera and Ramleela in 2013. Yeah. There was Dil Dhadakne Do Bajirao Mastani in 15. Now it's like Khilji, Simba and Karni Boy. It's like, wow. So it's a conscious endeavor to, you know, showcase that versatility. And it's all happening. So I'm really happy about it.
0: Phir mila dusra Ranveer. Ab wo superstar ban chuka tha. Usse apne talent ka andaaza tha. Usse pata tha ki wo kitna achha actor hai. Ronis ki jagah यकीन आ चुका था, लेकिन उसकी एनर्जी अभी उतनी ही बड़ी थी जितना उसका एम्बिशन। लेकिन अब भी वो बेचैन था। और फिर आया तीसरा रणवीर, खामोशी, नो इंटरव्यूज, नो हेडलाइंस, नो एक्सप्लेनेशंस, सिर्फ एक फिल्म और उसके दो हिस्से, जिसने दुनिया से बाकी सब कुछ कह दिया। अजीब बात है ना, करियर की शुरुआत में रणवीर चाहता था कि दुनिया उसे सुने, आज दुनिया उसे सुनना चाहती है, लेकिन मिल रही है तो सिर्फ खामोशी। I told you, आज we about to get a brand new number one song। लेकिन ये गाना brand new है नहीं, ये वो गाना है जिसे हमेशा number one होना चाहिए था, क्योंकि इसमें भी खामोशी है, एक गहरी वाली खामोशी। The number one song on the Mirchi Top 20.
3: Number 1.

0: The Crown is now on the best song of the show. शायद इसी में इस गाने की सबसे बड़ी जीत छुपी है। इसने हमें याद दिला दिया कि हर चीज वायरल होने की जरूरत नहीं होती। कुछ फीलिंग्स, कुछ वाइब्स धीरे धीरे दिल में उतरती हैं और फिर वहीं रह जाती हैं। इट्स टाइम टू एंड दिस एपिसोड ऑफ द मिर्ची टॉप 20, बट फिर मिलूंगा। इनफैक्ट मैं भी वापस आऊंगा। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
3: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
2: मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ ना तो नींद आ जाती है।
4: क्यों नहीं हो रही पढ़ाई?
2: क्या करूँ?
3: अरे घोचू, तो लेटे लेटे पढ़ना, अच्छे से सो भी पाएगा रे तू।
5: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बज गए शाम के छह एंड यू एंजॉयिंग क्लब मिर्ची.
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, फास्टन योर सीट बेल्ट्स एंड वेट फॉर द नो स्मोकिंग साइन. वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड.
3: क्लब मिर्ची विद ऑयोंटिका एंड डीजे रिचर्ड.

चीज कॉमन है, दोनों लैंग्वेज नहीं इमोशन समझते हैं. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑल योर टिका विद यू टुनाइट ऑन लव मिर्ची. तो चाहे आप मेसी फैन हो, हालन फैन हो या बस गुड म्यूजिक का फैन, अगला गाना सबके लिए है.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Rabana. Murga, murga. Nafid wala murga. Mirchi, murga.
2: हेलो
3: हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग। मैं सेल्युलर से बोल रहा हूँ। सर हमारी एक स्कीम आई है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको समझाऊँ। ये वॉइस मेल के लिए है, अगर आप चाहते हैं और आपको इंग्लिश नहीं आती है सपोज माने आप, तो आप कोई भी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको आगे भेज सकते हैं।
2: अच्छा,
3: आप हिंदी में अपना मैसेज छोड़ेंगे और हमारी मशीन उसको कन्वर्ट करके दूसरी लैंग्वेज में डब कर देगी सर, जिसका सर कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मंथली कोई चार्ज नहीं लगेगा। सर आप चाहेंगे ये स्कीम आपको दे दी जाए?
2: पास है क्या ये सर्विस?
3: बिल्कुल सर, कोई एडिशनल चार्जेस नहीं है सर। जो आपका नॉर्मल प्लान चल रहा है उस प्लान के अकॉर्डिंग आपका बिल आएगा, सिर्फ आपकी एक फैसिलिटी बढ़ जाएगी।
2: जो क्या कॉस्टिंग पड़ेगा पर मैसेजेस का?
3: सर आप दिन में अगर 100 मैसेज भी भेजते हैं तो आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, आपका नॉर्मल रेंट रहेगा जो आपका चल रहा है अभी।
2: और ठीक है,
3: बीप सुनने के बाद अपना मैसेज छोड़िएगा।
2: ओके अगम सर, मुझे आपके अंडर में काम करना बहुत अच्छा लगता है, तो आप प्लीज मुझे अपनी टीम में रख लीजिए।
3: सर वेरी गुड, आपका मैसेज रिकॉर्ड हो गया सर, हमने इसको दूसरी लैंग्वेज में डब कर दिया। अब आपके बॉस ये सुनेंगे, सुनिए।
2: ये क्या है भैया?
3: सर ये आवाज तो आपकी लग रही है, मुझे लग रही है सेंटेंस इधर उधर हो गए।
2: तो भी मशीन चला रहे आती भी।
3: सर मैनेजर के अलावा किसी और को मैसेज देखे देखिए।
2: हेलो वीना मैम, प्लीज अभी जो आ रहा है प्रोजेक्ट उसके लिए मुझे नॉमिनेट कर लीजिए अपनी टीम में।
3: सर थैंक यू सो मच, आपका रिकॉर्ड हो गया, वीना मैम को ये सुनाई देगा।
2: मजाक कर रहा है तू मेरे से?
3: सर मेरी बात सुनिए, ये जो मेरी बात सुनिए सर, आई एम सो सॉरी सर, जितना आप मुझ पे चिल्लाए हैं मैंने रिकॉर्ड कर लिया। देखिए अब सही आएगा, देखिए ये दूसरी लैंग्वेज में आएगा, रुकिए सर आप। हेलो मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात तो सुनिए सर, मैं इतनी गाली नहीं सुन सकता सर, मैं इतनी।
4: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, मैंने तो रैंडमली आपका नंबर मिला दिया था सर, दिल्ली में सब आपको सुन रहे हैं, आप रेडियो मिर्ची में मुर्गा बन गया है आपका, प्लीज इतनी गाली मत दीजिए यार।
3: सर मैंने ये भी रिकॉर्ड कर लिया, देखिए सुनिए क्या आया है डब होके।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: अर्ज किया है
7: इरशाद, इरशाद।

वंस अगेन फुटबॉल का रूल सिंपल है, 90 मिनट्स में कुछ भी हो सकता है, और वीकेंड का रूल एक अच्छा गाना पूरा मूड बदल सकता है, एंड दैट इज व्हाट वी डू ऑन क्लब मिर्ची. सो कीप डांसिंग, कीप स्माइलिंग, वी जस्ट गॉट स्टार्टेड. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची, ऑल योर ओन थिंग आउट विद यू टुनाइट.

सॉल्यूशन लेस स्ट्रेस मोर बेस ऑफिशियल मेल्स मंडे देखेंगे आज सिर्फ प्लेलिस्ट सब पार्टी प्लान्स डिस्कस होगा ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका।

हर स्क्वाड में एक फ्रेंड होता है जो हर गोल पे कमेंटरी करता है और एक जो सिर्फ रील्स बनाता है। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो मुझे बताना है तो आ जाओ मेरे इंस्टाग्राम पे Ayontika AYANTIKA. I'm a bong and here's your next song on Club Mirchi.

Welcome back. बारिश की ठंडी हवा, फेवरेट पीपल और लाउड म्यूजिक. ऑनेस्टली इससे बेटर वीकेंड कॉम्बो एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो शूज पहन लो या स्लिपर्स, बस ग्रूव करना मत रोकना. DJ Richard Mirchi, Oyon Thika, your host for the night on Club Mirchi.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
2: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
3: बार बार
2: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन इट्स हॉट
6: लेडीज एंड जेंटलमैन फैसन योर सीट बेल्ट्स एंड वेट फॉर द नो स्मोकिंग साइन वी आर गोना गो

0: मिर्ची मिर्ची
1: मिर्ची। हेलो पीपल, वीकेंड फाइनली नॉक कर रहा है और क्लब मिर्च ऑफिशियली ऑन हो चुका है। बाहर बारिश की बूंदे, अंदर बेस की धूम, तो वॉल्यूम फुल करो, मूड कूल करो और डांस फ्लोर हो या बोर्डम, गाड़ी हो या बालकनी, आज रात सिर्फ एक ही रूल है, नो रूल्स ओनली गुड वाइब्स। मैं हूँ मिर्ची ऑयोंटिक एंड विद मी इज डीजे रिचर्ड। अगले कुछ घंटों तक पार्टी नॉन स्टॉप, हिट्स बैक टू बैक और वर्ल्ड कप फीवर के साथ बारिश वाली मस्ती भी। वेलकम टू

वीकेंड का सीन सिंपल है, फोन साइलेंट, वरीज ऑफलाइन और म्यूजिक फुल वॉल्यूम, बारिश को बैकग्राउंड डांसर बना दो और खुद बन जाओ टुनाइट्स मेन कैरेक्टर। क्लब मिर्ची इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका।

फैन क्लब मिर्ची में एक ही स्ट्रेटजी चलता है, गुड वाइब्स ओनली. मैच का स्कोर जो भी हो, टुनाइट एवरीवन्स विनिंग बिकॉज़ द प्लेलिस्ट इज एब्सोल्युटली ऑन फायर थैंक्स टू डीजे रिचर्ड. आई एम योर होस्ट मिर्ची ओयोंतिका एंड दिस इज क्लब मिर्ची. द साउंड ऑफ द फ्यूचर इज

पेनल्टी शूट आउट हो या अंताक्षरी, प्रेशर सब जगह होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ मिस भी किया तो अगला गाना आपको फिर डांस करवा देगा। ऑफ कोर्स ऑन क्लब मिर्ची, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो, दिखा विथ यू टुनाइट।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Navid wala murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hello, Tejinder ji.
2: हाँ जी
3: तेजेंद्र जी, मैं बोल रहा हूँ पासपोर्ट ऑफिस से। आपने अप्लाई कर रखा था पासपोर्ट?
2: जी, हाँ जी किया था।
3: हाँ, ये तेजेंद्र जी आपका थोड़ा लेट मिलेगा पासपोर्ट, आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था मैंने।
2: कितना लेट मिलेगा
3: आपको इसमें? एक सेकंड रुकिए, मैं चेक कर लेता हूँ। अरे इनका तेजेंद्र का पासपोर्ट कब मिल रहा है? तत्काल में, आपने तत्काल में बनवाया ना इमरजेंसी में?
2: हाँ जी,
3: एक सेकंड। हाँ इमरजेंसी का है सर, 3.5 महीने बाद मिलेगा आपको पासपोर्ट।
2: 3.5 महीने बाद?
3: हाँ जी
2: भाई साहब, तत्काल का क्या मतलब होता है? 5 दिन में मिलता है तत्काल का? तो
3: सर वो मुझे ही मालूम है, मेरे को क्यों समझा रहे हैं। असल में तेजेंद्र जी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, आपके आसपास कोई है तो नहीं?
2: नहीं कोई नहीं है।
3: मैं ये कह रहा था, हमारा एक बंदा है जिसकी शक्ल आपसे मिलती है, ठीक है?
2: अच्छा।
3: बिल्कुल वो डिक्टो कॉपी लगता है आपका, जीरोक्स लगता है। अच्छा, उसको निकलना है दुबई। वो वैसे तो निकल नहीं सकता अपने पासपोर्ट से क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी, तो हम कुछ दिन के लिए आपके पासपोर्ट पे से आपका फोटो हटा के ना, आपकी दाढ़ी होती तो चल जाता, उसका फोटो चिपका के आपके नाम से वो दुबई जाएगा। वो 3-4 आदमियों को ठिकाने लगा के वापस आ जाएगा, तो उसमें 3-4 महीने लगेंगे।
2: क्या बोल रहा है भाई, कौन? हेलो।
3: तो मैं उसको बोल देता हूँ, वो वहाँ पे वो आपके घर पहुँचवा देगा, आप फिक्र मत करो। वो बंदा ही
2: हेलो।
3: हाँ बोलिए बोलिए।
2: क्या बोल रहा भाई?
3: आपके पासपोर्ट पे उसका फोटो लगा के आपके नाम से वो दुबई जाएगा, 2-3 को ठिकाने लगाना, वापस आ जाएगा, उसका जरूरी काम है।
2: मैं बोल रहा हूँ,
3: मैं पासपोर्ट ऑफिस से बोल रहा हूँ।
2: क्या बोल रहा है? क्या
3: आप इतना भड़क क्यों रहे हो? काम आप थोड़ी करने जा रहे हो, काम तो वो लगाने जा रहे हैं ठिकाने।
2: नहीं, बात क्या कर रहा है? पासपोर्ट पे किसी और को भेज रहा है
3: यार आप मेरी। तेजेंद्र जी
2: नहीं
3: सोचो वो कितना भड़क रहा होगा, 3 आदमियों को उसको टपका के आना है दुबई में, उसकी भी तो भड़कन सोचो ना। अरे तो यार आपका पासपोर्ट आपको वापस मिल जाएगा, 1.5 महीने के लिए आपका नाम यूज कर रहा है। आपका नाम यूज करने में आपकी गाड़ी मांग रहा है क्या? गाड़ी यूज कर रहा है वो?
2: नाम बता पहले। कौन रहा है?
3: ये लकी ड्रॉ निकल रहे हैं, वरना किसी और तेजेंद्र को भेज देते। आपका मौका लगा, आप ऐसे भड़क रहे हो उल्टा। मेरी बात सुनिए तेजेंद्र। तेजेंद्र मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और तुम रेडियो मिर्ची पे हो। मुझे शालिनी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुमने पासपोर्ट अप्लाई कर रखा है, तुम्हारा मुर्गा बनाया भाई। तुम बहुत गुस्से वाले हो, तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें दुबई भेज दूँ, उसे नहीं भेजूं।
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस, और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन GCC। विजिट मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
6: ओ भाई जोश है फुल हाई, और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन।
9: इट्स हॉट। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो।

बैक वंस अगेन. फुटबॉल का रूल सिंपल है, 90 मिनट्स में कुछ भी हो सकता है. और वीकेंड का रूल एक अच्छा गाना पूरा मूड बदल सकता है. एंड दैट इज व्हाट वी डू ऑन क्लब मिर्ची. सो कीप डांसिंग, कीप स्माइलिंग, वी जस्ट गॉट स्टार्टेड. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची, ऑल योर ओन थिंग आउट विद यू टुनाइट.

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरी
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: यार तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
3: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

का एक मेमोरी होता है और हर वीकेंड का एक एंथम हो सकता है अगला गाना वही बन जाए आपके लिए। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंती का एक साथ, दिस इज क्लब मिर्ची बेबी।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's Hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's Hot.
3: जॉन अब्राहम, आपके हिसाब से द टॉप फिट बॉयज ऑफ द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री?
4: फर्स्ट रेफरेंस इज ऑलवेज गोइंग टू बी वरुण धवन, एंड आई टेल यू व्हाई। क्योंकि वरुण का जो फिजिक है वो बहुत ही प्रोपोर्शनेट है, उसके लेग्स बहुत ही स्ट्रांग है, टाइगर श्रॉफ फैंटास्टिक बॉडी, रणवीर सिंह एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली फिट, एंड ऑफ कोर्स ऋतिक रोशन। ऑनेस्टली अमंगस्ट ऑल दीज इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई थिंक सबसे फिटेस्ट इंसान हमारे इंडस्ट्री में इज अक्षय कुमार, एंड आई मीन holistically fit. He can survive anywhere. अगर आप उसको माउंट एवरेस्ट पे छोड़ दो, अगर आप उसको रेगिस्तान में छोड़ दो, अक्षय कुमार will be the only guy who will survive and come out.
3: छोड़ने की जरूरत ही नहीं है जॉन अब्राहम। अक्षय कुमार is the only person in the हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो by choice इन जगहों पर जाएंगे। आप सुन रहे हैं मिर्ची, it's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi, it's hot.
5: Ladies and gentlemen.

वीकेंड ऑफिशियली तब शुरू होता है जब वॉल्यूम बटन ऊपर जाता है, तो स्पीकर्स रेडी रखिए क्योंकि क्लब मिर्ची की पार्टी अभी तो बस वार्म अप ही कर रही थी। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन टुगेदर।

मतलब सिर्फ रेस्ट नहीं, बेस्ट भी। डांस करो, गाओ या बस बारिश देखते हुए चिल करो। हम लेकर आए हैं नॉन स्टॉप हिट मशीन, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका विद क्लब मिर्ची।

बारिश की स्मेल, फ्रेश प्लेलिस्ट और वीकेंड का थ्रिल, बस इसी कॉम्बो के लिए तो पूरा हफ्ता वेट करते हैं। अब डांस करना कंपलसरी है विद क्लब मिर्ची एंड डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंतिका।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

सबसे बड़ी ट्रॉफी क्या है पता है? मंडे को ये कह पाना, बॉस वीकेंड वाज वर्थ इट। तो छोड़ो सारी टेंशन और चलो नेक्स्ट ट्रैक के साथ सेलिब्रेशन कंटिन्यू करते हैं ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयंतिका।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
2: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स, जबरदस्त ट्रैक्स। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन।
3: 89.6 FM मिर्ची वन।
4: It's hot.
5: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

हेलो पार्टी स्क्वाड, गोल सेलिब्रेट करने का एक तरीका स्टेडियम में होता है और दूसरा डांस फ्लोर पे। हम सेकंड वाला चूज करते हैं। उन क्लब मिर्ची रेडी फॉर अनदर बैंगर। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑल योर टेक आउट टुगेदर बेबी।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
3: आएंगे दीदी।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.
6: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

Welcome back. बारिश की ठंडी हवा, फेवरेट पीपल और लाउड म्यूजिक. ऑनेस्टली इससे बेटर वीकेंड कॉम्बो एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो शूज पहन लो या स्लिपर्स, बस ग्रूव करना मत रोकना. DJ Richard Mirchi, Ayon Thika, your host for the night on Club Mirchi.

स्ट्रेटजी चलता है, गुड वाइब्स ओनली. मैच का स्कोर जो भी हो, टुनाइट एवरीवन्स विनिंग बिकॉज़ द प्लेलिस्ट इज एब्सोल्युटली ऑन फायर थैंक्स टू डीजे रिचर्ड. आई एम योर होस्ट मिर्ची ओयोंतिका एंड दिस इज क्लब मिर्ची. द साउंड ऑफ द फ्यूचर इज

वीकेंड की बारिश वाली रात और दोस्तों का साथ, बस एक चीज मिसिंग है, थोड़ा और वॉल्यूम। तो स्पीकर्स को काम पे लगाइए, क्लब मिर्ची विद डीजे मिर्ची और मिर्ची ऑन द गाइस इन फुल पावर।

connect your soul, connect your body, enter the simulation.

मिर्ची और यौनतिका की दुनिया का हिस्सा बनना है तो कम से हाई टू बी ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल्स। नाम की स्पेलिंग है AYANTIKA। रेडियो के बाहर भी स्टोरीज, फन मोमेंट्स, बिहाइंड द माइक लाइफ और लोड्स ऑफ लव आपका वेट कर रहे हैं। लेट्स कनेक्ट। दिस इज क्लब मिर्ची।

हेलो पार्टी स्क्वाड, गोल सेलिब्रेट करने का एक तरीका स्टेडियम में होता है और दूसरा डांस फ्लोर पे। हम सेकंड वाला चूज करते हैं। ऑन क्लब मिर्ची, रेडी फॉर अनदर बैंगर। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल।

ना जाए कोई खाकी शिवाओं की।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए।
3: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
4: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: स्कीम मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ, मैं इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा
3: है? रमेश बोल रहा हूँ सर। से
2: अभी कोई और बोल रही थी।
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
2: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
7: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
2: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
2: कभी किसी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी की आवाज़ आ रही है। नहीं भैया नहीं, नहीं चाहिए मुझे।
8: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
2: कोई बोल रहा है?
3: कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आपसे रमेश बोल रहा
9: है। सर मेरी बात सुनिए सर, आपसे सर फोन मत काटिएगा सर, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दें जरा हंस के।
10: थैंक यू
11: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
12: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
13: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
14: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने।
15: हिट गाने
16: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
17: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
18: लेडीज एंड जेंटलमैन,

अगर ड्रिंक किया है तो स्टीयरिंग व्हील को टच भी नहीं करना। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके साथ ऑन क्लब मिर्ची। कैब बुक कीजिए, डेजिग्नेटेड ड्राइवर चूज कीजिए या किसी दोस्त का हेल्प लीजिए। एक स्मार्ट डिसीजन पूरी रात को हैप्पी एंडिंग देता है, रिमेम्बर दैट।

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
4: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: दोस्ती का गुस्सा है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
7: भाई साहब, सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
8: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
9: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट
12: लेडीज एंड जेंटलमैन।

वेलकम बैक दोस्तों। अगर आप घर पे हो तो लिविंग रूम को स्टेडियम बना दो, और अगर ड्राइव कर रहे हो तो गाड़ी के स्पीकर्स को कॉन्सर्ट बना दो। वीकेंड सिर्फ दो दिन का होता है, एनर्जी अनलिमिटेड होनी चाहिए। दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। लेट्स रोल इट।

चीज सिखाई है, टीम वर्क विंस। और वीकेंड भी तभी यादगार बनता है जब अपनी गैंग के साथ हंसी, गाने और मेमोरीज शेयर की जाए। सो कीप द वाइब्स हाई एंड कीप लिसनिंग टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंटिका।

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: मिलिन सोमन, आपकी इतनी फिट बॉडी है, क्या आपने कभी इस बॉडी का फायदा उठाया है? आ जा, दिखाता हूँ तुझे, झगड़ा करेगा मेरे साथ।
4: कभी झगड़ा नहीं किया, और टफ फिजिक का मतलब ये नहीं कि झगड़ा करके उसको जस्टिफाई करो। गुड फॉर शो व्हिच इज गुड फॉर माय प्रोफेशन एंड आई वर्क अ लॉट, I work very hard, so I need that fitness level.
3: And I need your motivation level, Milind Soman. Aap sun rahe hain Mirchi, it's hot.
1: Bollywood Boldal.
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
0: Only on Mirchi, it's hot.
5: Ladies and gentlemen.

बैक वंस अगेन. फुटबॉल का रूल सिंपल है, 90 मिनट्स में कुछ भी हो सकता है. और वीकेंड का रूल एक अच्छा गाना पूरा मूड बदल सकता है. एंड दैट इज व्हाट वी डू ऑन क्लब मिर्ची. सो कीप डांसिंग, कीप स्माइलिंग, वी जस्ट गॉट स्टार्टेड. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची, ऑल योर ओन थिंग.

फ्रेंड होता है जो हर गोल पे कमेंट्री करता है, और एक जो सिर्फ रील्स बनाता है। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो मुझे बताना है, तो आ जाओ मेरे इंस्टाग्राम पे ओयोंतिका AYANTIKA। आई एम अ बॉन्ग एंड हियर्स योर नेक्स्ट सॉन्ग ऑन क्लब मिर्ची।

बस दोस्तों आज की पार्टी यही फुल टाइम विसल लेती है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयंतिका आपके साथ, फुटबॉल का जोश, वीकेंड का स्वैग और म्यूजिक की ये एनर्जी हमेशा साथ रखिए। सेफ रहिए, रिस्पॉन्सिबली सेलिब्रेट कीजिए, बारिश का मजा लीजिए और याद रखिए, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। अगले वीकेंड फिर मिलेंगे और फिर मचाएंगे फुल ऑन हंगामा। टिल देन कीप द म्यूजिक लाउड, द स्माइल्स लाउडर। दिस इज योर होस्ट मिर्ची ओयंतिका साइनिंग ऑफ फॉर द वीकेंड। टाटा।

बारिश का मौसम है, कभी रोमांटिक कभी ड्रामेटिक, लेकिन प्लेलिस्ट हमारी सिर्फ फैंटास्टिक, सो डोंट टच दैट डायल, क्योंकि अभी पार्टी का लेवल और भी हाई होने वाला है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल विद यू एंड दिस इज द

0: What's up, party people? Good evening. Weekend finally आ गया है. Football fever full power पे और dance floor भी ready है आपके लिए. I'm your host Mirchi Oyonthika and with me is DJ Richard. Let us not mourn Brazil and celebrate football. Goals सिर्फ मैदान में नहीं dance floor पे भी होंगे. तो volume बढ़ाओ, squad को tag करो, lights dim करो और mood को full on celebration mode पे डाल दो. Because this is Club Mirchi, the son of the future is here.
1: DJ Richard.
2: इन हाथों में जब से है आया ये हाथ तुम्हारा.

चीज कॉमन है, दोनों लैंग्वेज नहीं इमोशन समझते हैं. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑल योर टेक आउट विद यू टुनाइट ऑन क्लब मिर्ची. तो चाहे आप मेसी फैन हो, हालन फैन हो या बस गुड म्यूजिक का फैन, अगला गाना सबके लिए है.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं। जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
2: और हम जहां चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.
3: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

बैक वंस अगेन। फुटबॉल का रूल सिंपल है, 90 मिनट्स में कुछ भी हो सकता है, और वीकेंड का रूल एक अच्छा गाना पूरा मूड बदल सकता है, एंड दैट इज व्हाट वी डू ऑन क्लब मिर्ची। सो कीप डांसिंग, कीप स्माइलिंग, वी जस्ट गॉट स्टार्टेड। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो, थिंक आउट विद यू टुनाइट।

वीकेंड रेजोल्यूशन, लेस स्ट्रेस, मोर बेस, ऑफिशियल मेल्स मंडे देखेंगे, आज सिर्फ प्लेलिस्ट, सब पार्टी प्लान्स डिस्कस होगा ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका।

यू नो, हर स्क्वाड में एक फ्रेंड होता है जो हर गोल पे कमेंट्री करता है, और एक जो सिर्फ रील्स बनाता है. आप कौन सी कैटेगरी में आते हो मुझे बताना है, तो आ जाओ मेरे इंस्टाग्राम पे Ayontika, AYANTIKA. I'm a bong, and here's your next song on Club Magic.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Hello, Sharps. Our product is phenomenal, one of a kind, but still profit nahi ho raha hai. Maine Baba Ji se advice li to kehte hain.
2: Office ke toilet mein toilet paper white nahi, yellow lagao. Profit aayega.
1: Relative se advice slow to kehte hain.
3: Kaam ko time do, 25 ghante kaam karo, dark circles honge to future bright hoga.
1: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
4: भाई क्या कर रहा है तू? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहाँ तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
5: Qatar's number one Hindi radio station, Mirchi. Take your partner with us now. Your business will go wow. Call now 7070-7687.
6: Ladies and gentlemen,

Welcome back. बारिश की ठंडी हवा, फेवरेट पीपल और लाउड म्यूजिक. ऑनेस्टली इससे बेटर वीकेंड कॉम्बो एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो शूज पहन लो या स्लिपर्स, बस ग्रूव करना मत रोकना. DJ Richard Mirchi, Oyontika, your host for the night on Club Mirchi.

मॉनसून की रात नियॉन लाइट्स और फेवरेट गाने, इससे बेटर वीकेंड कॉम्बो हो ही नहीं सकता। सो वेयर एवर यू आर वाइबिंग, बालकनी, टेरेस या लॉन्ग ड्राइव, क्लब मिर्ची इज योर परफेक्ट पार्टी पार्टनर। डीजे रिचर्ड, मिर्ची और योंतिका विथ यू, लेट्स गो।

Rainy nights are made for hot coffee, good company and even better music. अगर कंपनी नहीं है टेंशन किस बात की, क्लब मिर्ची है ना। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका आपके पक्के दोस्त। लेट्स गो बेबी।

लाइफ को कभी कभी शफल पे छोड़ देना चाहिए, पता नहीं अगला सरप्राइज एक फेवरेट गाना हो या एक अनफॉरगेटेबल मेमोरी। एंजॉय एवरी बीट विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन क्लब मिर्ची।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

फैन क्लब मिर्ची में एक ही स्ट्रेटजी चलता है, गुड वाइब्स ओनली. मैच का स्कोर जो भी हो, टुनाइट एवरीवन्स विनिंग बिकॉज़ द प्लेलिस्ट इज एब्सोल्युटली ऑन फायर थैंक्स टू डीजे रिचर्ड. आई एम योर होस्ट मिर्ची और योंटिका एंड दिस इज क्लब मिर्ची, द साउंड ऑफ द फ्यूचर.

सेलिब्रिटी शूट आउट हो या अंताक्षरी, प्रेशर सब जगह होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ मिस भी किया तो अगला गाना आपको फिर डांस करवा देगा। ऑफ कोर्स ऑन क्लब मिर्ची, डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयो, दे गा विद यू टुनाइट।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. Naviyat bala murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hello, Tejinder ji.
2: हाँ जी,
3: हाँ जी तेजेंद्र जी, मैं बोल रहा हूँ पासपोर्ट ऑफिस से। आपने अप्लाई कर रखा था पासपोर्ट?
2: जी, हाँ जी किया था।
3: हाँ, ये तेजेंद्र जी आपका थोड़ा लेट मिलेगा पासपोर्ट, आपको ये इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया था मैंने।
2: कितना लेट मिलेगा
3: आपको इसमें? एक सेकंड रुकिए, मैं चेक कर लेता हूँ। अरे इनका तेजेंद्र का पासपोर्ट कब मिल रहा है? तत्काल में, आपने तत्काल में बनवाया ना इमरजेंसी में?
2: हाँ जी,
3: एक सेकंड। हाँ इमरजेंसी का है सर, 3.5 महीने बाद मिलेगा आपको पासपोर्ट।
2: 3.5 महीने बाद?
3: हाँ जी
2: भाई साहब, तत्काल का क्या मतलब होता है? 5 दिन में मिलता है तत्काल का? तो
3: सर वो मुझे ही मालूम है, मेरे को क्यों समझा रहे हैं। असल में तेजेंद्र जी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। आपके आसपास कोई है तो नहीं?
2: नहीं कोई नहीं है।
3: ये कह रहा था, हमारा एक बंदा है जिसकी शक्ल आपसे मिलती है, ठीक है?
2: अच्छा।
3: बिल्कुल वो डिक्टो कॉपी लगता है आपका, जीरोक्स लगता है। अच्छा, उसको निकलना है दुबई। वो वैसे तो निकल नहीं सकता अपने पासपोर्ट से क्योंकि पुलिस पकड़ लेगी। तो हम कुछ दिन के लिए आपके पासपोर्ट पे से आपका फोटो हटा के, ना आपकी दाढ़ी होती तो चल जाता, उसका फोटो चिपका के आपके नाम से वो दुबई जाएगा। वो 3-4 आदमियों को ठिकाने लगा के वापस आ जाएगा, तो उसमें 3-4 महीने लगेंगे।
2: क्या बोल रहा है भाई, कौन? हेलो।
3: तो मैं उसको बोल देता हूँ, वो वहाँ पे, वो आपके घर पहुँचवा देगा। बल्कि वो बंदा ही।
2: हेलो।
3: हाँ बोलिए बोलिए।
2: क्या बोल रहा है भाई,
3: आपके पासपोर्ट पे उसका फोटो लगा के आपके नाम से वो दुबई जाएगा, 2-3 को ठिकाने लगाना, वापस आ जाएगा, उसका जरूरी काम है।
2: मैं बोल रहा हूँ,
3: मैं पासपोर्ट ऑफिस से ही बोल रहा हूँ।
2: क्या बोल रहा है, क्या
3: आप इतना भड़क क्यों रहे हो? काम आप थोड़ी करने जा रहे हो, काम तो वो लगाने जा रहे हैं ठिकाने।
2: नहीं, बात क्या कर रहा है, पासपोर्ट पे किसी और को भेज रहा है
3: यार। आप मेरी तेजेंद्र जी,
2: नहीं
3: सोचो वो कितना भड़क रहा होगा, 3 आदमियों को उसको टपका के आना है दुबई में, उसकी भी तो भड़कन सोचो ना। अरे तो यार आपका पासपोर्ट आपको वापस मिल जाएगा 1.5 महीने के लिए, आपका नाम यूज कर रहा है। आपका नाम यूज करने में क्या आपकी गाड़ी मांग रहा है क्या? गाड़ी यूज कर रहा है वो?
2: नाम बता पहले, कौन रहा है?
3: ये लकी डॉ निकल रहे हैं, वरना किसी और तेजेंद्र को भेज देते। आपका मौका लगा, आप ऐसे भड़क रहे हैं उल्टा। मेरी बात सुनिए तेजेंद्र। तेजेंद्र मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और तुम रेडियो मिर्ची पे हो। मुझे शालिनी ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुमने पासपोर्ट अप्लाई कर रखा है, तुम्हारा मुर्गा बनाया भाई। तुम बहुत गुस्से वाले हो, तो मैं सोच रहा हूँ तुम्हें दुबई भेज दूँ, उसे नहीं भेजूं।
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
5: तो सिर्फ चोरे करें,
6: हमारी चोरियाँ चोरों से कम है के?
7: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के? कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची 1, इट्स हॉट।
8: लेडीज एंड जेंटलमैन,

हेलो पार्टी स्क्वाड, गोल सेलिब्रेट करने का एक तरीका स्टेडियम में होता है और दूसरा डांस फ्लोर पे. हम सेकंड वाला चूज करते हैं. ऑन क्लब मिर्ची, रेडी फॉर अनदर बैंगर. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची, ऑल योर टेक आउट टुगेदर बेबी.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
4: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं, जबकि साइकिल की बजेगी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझो।
7: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
8: बहुत कुछ होगा।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
11: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।

कम हो सकता है अगला गाना वही बन जाए आपके लिए। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका एक साथ, दिस इज क्लब मिर्ची बेबी।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: आमिर खान इतनी सारी फिल्में और हर फिल्म में एक अलग फिजिक. What is the ultimate fitness tip?
4: I know everyone says this, but I can't stress how important it is to be regular in your workout. And along with that, for the best results, you need to have a very balanced and healthy diet. आमतौर पे लोग high protein diet करते हैं. You know, that's not healthy. The body needs proteins, but also needs carbohydrates. It needs fat. It needs everything. So we must have a balanced diet and a healthy diet and rest. You have to sleep well. You have to rest well.
3: Sleep well? Oh ho ho ho. फिर तो फिट होना मुश्किल है आमिर खान. आप सुन रहे हैं मिर्ची. It's hot.
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
5: बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना.
6: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
7: कैसे रुक सकता है?
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
8: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.
10: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड.

वीकेंड ऑफिशियली तब शुरू होता है जब वॉल्यूम बटन ऊपर जाता है, तो स्पीकर्स रेडी रखिए क्योंकि क्लब मिर्ची की पार्टी अभी तो बस वार्म अप ही कर रही थी। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन टुगेदर।

वीकेंड का मतलब सिर्फ रेस्ट नहीं, बेस्ट भी। डांस करो, गाओ या बस बारिश देखते हुए चिल करो। हम लेकर आए हैं नॉन स्टॉप हिट मशीन डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका विद क्लब मिर्ची।

बारिश की स्मेल, फ्रेश प्लेलिस्ट और वीकेंड का थ्रिल, बस इसी कॉम्बो के लिए तो पूरा हफ्ता वेट करते हैं। अब डांस करना कंपलसरी है विद क्लब मिर्ची एंड डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंतिका।

की सबसे बड़ी ट्रॉफी क्या है पता है? मंडे को ये कह पाना, बॉस वीकेंड वॉज वर्थ इट। तो छोड़ो सारी टेंशन और चलो नेक्स्ट ट्रैक के साथ सेलिब्रेशन कंटिन्यू करते हैं ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयंतिका।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
2: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
3: दोनों मिलेगा।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, स्टेशन
5: 89.6
6: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
7: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो।

बैक वंस अगेन. फुटबॉल का रूल सिंपल है, 90 मिनट्स में कुछ भी हो सकता है. और वीकेंड का रूल एक अच्छा गाना पूरा मूड बदल सकता है. एंड दैट इज व्हाट वी डू ऑन क्लब मिर्ची. सो कीप डांसिंग, कीप स्माइलिंग, वी जस्ट गॉट स्टार्टेड. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑल योर ओन थिंग आउट विद यू टुनाइट.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
4: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट। लेडीज एंड जेंटलमैन,

Welcome back. बारिश की ठंडी हवा, फेवरेट पीपल और लाउड म्यूजिक. ऑनेस्टली इससे बेटर वीकेंड कॉम्बो एग्जिस्ट ही नहीं करता. तो शूज पहन लो या स्लिपर्स, बस ग्रूव करना मत रोकना. DJ Richard Mirchi, on your own, take out your host for the night on Club Mirchi. Yeah.

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood bold
2: only on Mirchi. It's hot.
3: John Abraham, आपके हिसाब से the top fit boys of the Hindi film industry.
4: First reference is always going to be Varun Dhawan and I'll tell you why. क्योंकि वरुण का जो physique है वो बहुत ही proportionate है. उसके legs बहुत ही strong है. Tiger Shroff, fantastic body. Ranveer Singh, extremely, extremely fit. And of course, Hrithik Roshan. Honestly, amongst all these, including myself, I think सबसे fittest इंसान हमारे industry में is Akshay Kumar. Akshay. And I mean holistically fit. He can survive anywhere. अगर आप उसको Mount Everest पे छोड़ दो, अगर आप उसको रेगिस्तान में छोड़ दो, Akshay Kumar will be the only guy who will survive and come out.
3: छोड़ने की जरूरत ही नहीं है जॉन अब्राहम. अक्षय कुमार इज द ओनली पर्सन इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो बाय चॉइस इन जगहों पर जाएंगे. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
5: लेडीज एंड जेंटलमैन,
2: On a ride.
0: Club Mirchi with Oyon Dega and DJ.

एनर्जी में एक ही स्ट्रेटजी चलता है, गुड वाइब्स ओनली. मैच का स्कोर जो भी हो, टुनाइट एवरीवन इज विनिंग बिकॉज़ द प्लेलिस्ट इज एब्सोल्युटली ऑन फायर थैंक्स टू डीजे रिचर्ड. आई एम योर होस्ट मिर्ची ऑन योर ओन थिंग एंड दिस इज क्लब मिर्ची, द साउंड ऑफ द फ्यूचर.

वीकेंड की बारिश वाली रात और दोस्तों का साथ, बस एक चीज मिसिंग है, थोड़ा और वॉल्यूम। तो स्पीकर्स को काम पे लगाइए, क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन द गाइस इन फुल पावर।

कुछ ओयोंतिका की दुनिया का हिस्सा बनना है तो कम से हाई टू बी ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल्स. नाम की स्पेलिंग है AYANTIK. रेडियो के बाहर भी स्टोरीज, फन मोमेंट्स, बिहाइंड द माइक लाइफ और लोड्स ऑफ लव आपका वेट कर रहे हैं. लेट्स कनेक्ट. दिस इज क्लब मिर्ची.

0: मिर्ची हेल्पलाइन?
1: नहीं नहीं, हेल्पलाइन मिर्ची, अपना सवाल क्या है वो बता बच्चू।
0: अरे भाई क्या बोलूं आपको, इधर घर ढूंढना इतना टफ है, कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा, क्या करूँ?
1: अबे सबसे पहले तो ये बता कि तू किसका घर ढूंढ रहा है, तभी तो हेल्प कर पाऊंगा ना।
2: मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

हेलो पार्टी स्क्वाड, गोल सेलिब्रेट करने का एक तरीका स्टेडियम में होता है और दूसरा डांस फ्लोर पे। हम सेकंड वाला चूज करते हैं। ऑन क्लब मिर्ची, रेडी फॉर अनदर बैंगर। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन द

रिमाइंडर, बारिश में रोड्स स्लिपरी होते हैं, स्पीड थोड़ी कम रखिए, हेडलाइट्स ऑन रखिए, सेफ डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। वीकेंड तभी परफेक्ट है जब आप और आपके अपने सेफली घर पहुंच जाए। माइंड द रोड्स एंड वी माइंड द म्यूजिक ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिक।

Jaan sab ja karo, jaan sab ja karo, jaan sab ja karo.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: सर, वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। मुझे एक रेफरेंस दिया था सर, मैं आपके सिर्फ दो मिनट लेना चाहूंगा, क्या आप मुझे दो मिनट दे सकते हैं?
2: हाँ जी बोलिए।
3: सर हमारी एक स्कीम आई है सर, हम आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जीरो ही नहीं बल्कि बैंक आपको हर महीने पैसे देगा सर, जितने आप चाहते हैं इतने पैसे आपको मिल जाएंगे।
2: आप मुझे पैसे दोगे? हाँ, हिडन चार्जेस?
4: सर इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है, अगर होते तो मैं पहले ही बोल देती।
2: कौन बोल रही है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ। सर मैं ये बता रहा था बैंक के बारे में आपको, अगर आपको स्कीम चाहिए ना सर, ये सबसे अच्छी स्कीम है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको हो ही नहीं सकती।
2: स्कीम मुझे क्यों मिल रही है, मतलब कोई इतनी मेहरबानी क्यों हो रही है?
5: सर मैं आपसे इतनी भी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका रेफरेंस बहुत तगड़ा है, वरना हम तो इस तरह की स्कीम किसी को देते भी नहीं।
2: हेलो कौन बोल रहा है?
3: सर रमेश ही बोल रहा हूँ मैं, इसमें ये कह रहा था सर, इसमें आपको कोई लेने देने वाली बात ही नहीं है, आप सिर्फ मेरी बात मानो, आप ले लो।
2: के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
4: सर आपको एक पैन कार्ड की कॉपी और अपना पुराना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना है, दैट्स ऑल।
2: हेलो मैडम।
3: हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ। हाँ जी सर रमेश बोल रहा हूँ।
2: कौन बोल रहा
3: है? रमेश बोल रहा हूँ सर।
2: अभी कोई और बोल रही थी।
3: सर ले लीजिए सर, आप बस आंखें बंद करके मेरी बात मानिए।
2: लेकिन कहीं कुछ उल्टी सीधी तो वो नहीं है, इसमें कुछ परेशानी तो नहीं होगी मुझे?
6: आप चिंता मत कीजिए, हर चीज के पेपर साइन होंगे बाकायदा, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
2: कौन बोल रहा है?
3: सर ले लीजिए यार, इसमें कोई चिंता ही नहीं है सर, इसमें
2: दो दिन बाद मुझे कॉल कर लेना।
7: सर 15 तारीख जो है वो लास्ट डेट है, ऐसा ऑफर आपको कहीं भी किसी भी और बैंक में नहीं मिलेगा, ये सिर्फ हमारी एक्सक्लूसिव स्कीम है।
2: कौन बोल रहा है भैया?
3: सर रमेश बोल रहा हूँ। आप यार उस पे क्यों जा रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ आप ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे सर?
2: कभी किसी की आवाज आ रही है, कभी किसी की आवाज आ रही है। नहीं भैया नहीं चाहिए मुझे।
5: सर आप मान क्यों नहीं रहे हो यार, आपको लोन बेचने के चक्कर में, स्कीम बेचने के चक्कर में
3: आज सबका दिमाग खराब हो गया, अपना खुद दिमाग खराब कर रहे हैं यार आप। सर आप ले लो यार, कमाल कर दिया आपने यार दिमाग। क्या क्या
2: कोई बोल रहा है?
3: कौन बोल रहा है यार? मैं बोल आप सर रमेश बोल रहे हैं। सर मेरी बात सुनिए सर, सर आप सर फोन मत काटिएगा।
8: सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, ये सारी आवाजें मेरी हैं, अब मिर्ची पे सब आपको सुन रहे हैं, आप मुर्गा बन गए, आप कुकड़ों को बोल दे जरा हंस के।
9: थैंक यू
10: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
11: 89.6
12: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go
10: on a ride.
13: Club Mirchi.

विसल बज चुका है, बीट्स वार्म अप कर चुके हैं और अब सिर्फ एक काम बाकी है, डांस लाइक नोबडीज वॉचिंग क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयो देगा।

पार्टी जरूर कीजिए, लेकिन अगर ड्रिंक किया है तो स्टीयरिंग व्हील को टच भी नहीं करना। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका आपके साथ ऑन क्लब मिर्ची। कैब बुक कीजिए, डेजिग्नेटेड ड्राइवर चूज कीजिए या किसी दोस्त का हेल्प लीजिए। एक स्मार्ट डिसीजन पूरी रात को हैप्पी एंडिंग देता है, रिमेम्बर दैट।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: यार। तूने सुना, एक दूल्हा ना ट्रैफिक से बचने के लिए साइकिल से मंडप तक पहुंच गया।
4: वैसे ना ये ग्रीन फ्लैग है, क्योंकि इसको पता है कि रिलेशनशिप की गाड़ी जो है दो पहिए पे चलती है। और मुझे पता है कि इसकी बारात में ना ढोल नगाड़े नहीं जबकि साइकिल की बजेगी।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: अरे करण, अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM मिर्ची 1। इट्स हॉट।
8: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो।

वेलकम बैक दोस्तों। अगर आप घर पे हो तो लिविंग रूम को स्टेडियम बना दो, और अगर ड्राइव कर रहे हो तो गाड़ी के स्पीकर्स को कॉन्सर्ट बना दो। वीकेंड सिर्फ दो दिन का होता है, एनर्जी अनलिमिटेड होनी चाहिए। दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयंतिका। लेट्स रोल इट।

चीज सिखाई है, टीम वर्क विंस। और वीकेंड भी तभी यादगार बनता है जब अपनी गैंग के साथ हंसी, गाने और मेमोरीज शेयर की जाए। सो कीप द वाइब्स हाई एंड कीप लिसनिंग टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयोंटिका।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: अनिल कपूर सर, ये सवाल हम आपसे 365वीं बार पूछ रहे हैं कि आपकी फिटनेस का राज क्या है।
4: हेल्थ ऐसी बनाओ, काम ऐसा करो कि आप 40, 50 साल, 60 साल तक आराम से वैसे ही काम करते रहो। मीठा खाना तो थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा, आपको मीठा अगर सूट नहीं करता तो हफ्ते में एक बार खाइए, और खाना तो थोड़ा सा खाइए। आपको नमकीन पसंद है उसका मतलब ये नहीं कि आप इतना ही नमकीन खाते रहें। आपको चावल पसंद है तो दबा के आप चावल ही खा रहे हैं आप, यू नो, तो हर चीज़ करनी चाहिए, मगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके यू शुड वर्क इट आउट एंड बैलेंस एवरीथिंग इन लाइफ एंड डू एवरीथिंग इन लाइफ एंड दैट्स आई फील इज द मंत्रा फॉर योर फिटनेस। यू डू एवरीथिंग बट डू इट इन मॉडरेशन एंड डू इट व्हाट मेक्स यू हैप्पी।
3: हेल्थ टिप आपने दिया एकदम क्लास, क्योंकि अनिल कपूर आप आदमी एकदम झकास। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑन
1: बॉलीवुड बोल्डाल।
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
5: Amushai, zindagi badi honi chahiye, lambi nahi.
6: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
7: बार बार
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
6: FM मिर्ची वन इट्स हॉट
9: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो
10: ऑन अ राइड
11: क्लब मिर्ची।

बैक वंस अगेन. फुटबॉल का रूल सिंपल है, 90 मिनट्स में कुछ भी हो सकता है. और वीकेंड का रूल एक अच्छा गाना पूरा मूड बदल सकता है. एंड दैट इज व्हाट वी डू ऑन क्लब मिर्ची. सो कीप डांसिंग, कीप स्माइलिंग, वी जस्ट गॉट स्टार्टेड. डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची, ऑल योर ओन थिंग आउट विद यू टुनाइट.

यू नो हर स्क्वाड में एक फ्रेंड होता है जो हर गोल पे कमेंट्री करता है और एक जो सिर्फ रील्स बनाता है। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो मुझे बताना है तो आ जाओ मेरे इंस्टाग्राम पे ओयोंतिका AYANTIKA। आई एम अ बॉन्ग एंड हियर्स योर नेक्स्ट सॉन्ग ऑन क्लब मिर्ची।

बस दोस्तों आज की पार्टी यही फुल टाइम विसल लेती है। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका आपके साथ, फुटबॉल का जोश, वीकेंड का स्वैग और म्यूजिक की ये एनर्जी हमेशा साथ रखिए। सेफ रहिए, रिस्पॉन्सिबली सेलिब्रेट कीजिए, बारिश का मजा लीजिए और याद रखिए, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। अगले वीकेंड फिर मिलेंगे और फिर मचाएंगे फुल ऑन हंगामा। टिल देन कीप द म्यूजिक लाउड, द स्माइल्स लाउडर। दिस इज योर होस्ट मिर्ची ओयोंतिका साइनिंग ऑफ फॉर द वीकेंड। टाटा।

0: मिर्ची फ्रेश माल।
1: धमाल फोर में धमाल मचाने आ रहा है कहर।

इस गाने को आवाज दी है गुरु रंधावा ने। म्यूजिक एंड लिरिक्स बाय गुरु रंधावा, गिल मचरई एंड रॉनी अजनाली। धमाल फोर से सुनते रहिए कहर, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot. Mirchi. Fresh Maal.
1: धमाल 4 में धमाल मचाने आ रहा है कहर।

इस गाने को आवाज दी है गुरु रंधावा ने। म्यूजिक एंड लिरिक्स बाय गुरु रंधावा, गिल मचरई एंड रॉनी अजनाली। धमाल 4 से सुनते रहिए कहर, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

आगे आगे भागूं मैं ये पीछे पीछे आए, कुछ ना देखे कुछ ना सोचे आंखें नीचे आए।

0: क्या?
1: मैं क्यों बेचैन रहता हूँ,
0: क्यों
1: मेरी इस बेकरारी की वजह क्या है, बता दूँ क्या
0: क्या?